आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026, सुबह के 5:58 और 37 सेकेंड हुए हैं। स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के दैनिक प्रसारण में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। हिंदी समाचार आप सुनेंगे कुछ ही पल में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 में है, प्रस्तुत है आज का चिंतन।

गुरु नानक ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेगा समझो उसने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। आपा चिन्हना एक महान गुण है। इस बात का अनुभव महात्मा गांधी को उस समय हुआ जब वे बैरिस्टरी की विद्या प्राप्त कर रहे थे। आपा चिन्हना मनुष्य को अपने अंदर की कमजोरियों से अवगत कराता है तथा जब वह उन्हें देखकर लज्जित होता है और हृदय से उनसे छुटकारा पाने की चाह रखकर प्रयास करता है तब उसे अपने अंदर विद्यमान प्रभु ज्योति से प्रकाश मिलता है तथा उन पर विजय पाने में सक्षम होता है। धीरे धीरे आगे चलकर स्वयं को पूरी तरह से जानने के कारण उसे प्रभु की असीम शक्ति का वह स्रोत उपलब्ध हो जाता है कि वह आत्मबल द्वारा महामानव बन जाता है। गांधी जी का जीवन इसी का ज्वलंत उदाहरण है। कहते हैं गांधी जी पहले स्वभाव से संकोची थे, 10 आदमियों के सामने बोलने से घबराते थे। दूसरा, असत्य भाषण उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। इन कारणों से उनकी वकालत नहीं चली। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के एक बड़े व्यापारी सेठ अब्दुल्ला ने अपने व्यापार की देखरेख की सहायता के लिए गांधी जी को वहां बुलाया। इस प्रकार गांधी जी डरबन शहर पहुंचे। पर जब उन्होंने भारतीयों के प्रति गोरों के अत्याचार को देखा तो वे सिहर उठे। उनकी आत्मा ने उन्हें ललकारा, उठो जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, शोषण के विरुद्ध आवाज लगाओ, पीड़ितों के मुक्तिदाता बनो। क्योंकि गांधी जी आपा चिन्हने का सबक सीख चुके थे उन्हें आत्मा की आवाज सुनने में देर नहीं लगी। अपने अंदर की प्रभु की शक्ति के भंडार को पहचान कर उनमें अंग्रेजी साम्राज्य से टकराने का अदम्य साहस पैदा हो गया। झेपू और संकोची गांधी अब शक्तिवान बन चुके थे। गांधी जी पगड़ी उतारे बिना ही बाहर चले गए, पर यह अपमान उनके हृदय को बेध गया तथा उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की ठानी। दक्षिण अफ्रीका में दूसरी हृदय विदारक घटना तब घटी जब गांधी जी वहां रेल यात्रा कर रहे थे। रात के 9 बजे एक अंग्रेज उनके डिब्बे में आया तथा एक हिंदुस्तानी को वहां देख बहुत क्रोधित हुआ। उसने रेल कर्मचारियों को बुलाकर गांधी जी को उस डिब्बे से उतारने को कहा, जबकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था तथा उनके द्वारा इनकार किए जाने पर उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। साथ ही उनका सामान भी नीचे फेंक दिया गया। गाड़ी चली गई और गांधी जी रात भर शीत में ठिठुरते रहे। पर उनके आत्मबल ने, जो आपा चिन्हने द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ था, उन्हें गर्मी प्रदान की। उन्होंने इस अत्याचार के विरुद्ध अपने मन में योजना बनाई। नेटाल सरकार एक ऐसा बिल पास करना चाहती थी जिससे भारतीयों के अधिकार छीनते थे। गांधी जी ने इस बिल के विरुद्ध जनमत तैयार किया, पर फिर भी वह बिल पास हो गया। फिर भी वे हतोत्साहित नहीं हुए क्योंकि उन्हें आत्मबल पर भरोसा था। उन्होंने आंदोलन कायम रखा। अंततः उनकी जीत हुई जब ब्रिटिश सरकार द्वारा वह बिल स्वीकृत न हो सका। फिर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को नागरिक अधिकार दिलाने हेतु उन्होंने वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिससे उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ। इस प्रकार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक व्यापारी की सहायता के लिए, पर शोषण, अत्याचार व दमन के विरुद्ध निहत्थे अपने आत्मबल से संघर्ष करते हुए वे पीड़ितों के नेता बन गए। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली थी। शोषकों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने से पहले उन्होंने स्वयं से अपनी कमजोरियों से संघर्ष किया था। अपने भीतर के असत्य से जूझे थे, अपने भीतर के दबूपन व कायरता पर विजय पाई थी। इस प्रकार स्वयं पर विजय पाकर वे एक महामानव बन गए थे तथा उनमें जादुई शक्ति आ गई थी।

आप सुन रहे थे आज का चिंतन, आकाशवाणी का ही हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये भक्ति गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला भक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज में।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का भाग।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का भाग। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग, स्वास्थ्य वार्ता का कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर, 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत संगीत, प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। मॉर्निंग मेलोडी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर, प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, 11 बजे से पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

हमारे राज्य केंद्र से। 1:20 से पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे राज्य केंद्र से। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक मुख्य समाचार। संध्या 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 5:32 का समय होगा कार्यक्रम खेती बाड़ी का। प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से संध्या 6 बजे। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। 6:30 का समय होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 7 बजे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे राज्य केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जानकार। 7:30 पर कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी चाहत। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक। रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:54 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

सुबह के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। सुनवा रहे हैं शारदा सिन्हा की आवाज में ये भोजपुरी लोकगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय है आंखों के ऑपरेशन के बाद किन बातों का रखे ख्याल। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर ANC, भेंट करता है श्वेता रानी।
1: श्रोताओं, हमारी आंखें हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसके लिए हमें अपनी आंखों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। आजकल बहुत सारे उपकरण हमारे पास ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारी आंखों में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो आंखें हमारी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में हम विस्तार से जानने के लिए आज हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ANC, यानी डॉक्टर अशिक नारायण सिंह। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार श्रोताओं को। नमस्कार
1: सर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आंखों की आम समस्याएं क्या हैं?
2: आजकल के जिंदगी की व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे ज्यादा समस्या जो आ रही है, दो तरह की समस्या आ रही है जी। एक तो एलर्जी और दूसरी आंखों का थकान, तो ये दो बहुत ज्यादा कॉमन है।
1: तो एलर्जी किस वजह से होती है सर, और किस तरह से परेशानी होती है अगर आंखों में एलर्जी हो जाए?
2: सबसे पहले तो पॉल्यूशन लेवल हाई होने से एलर्जी की समस्या ज्यादा होती है। बाहर के धूल धुआं, तेज हवा, ये सब में एक्सपोजर होते रहने से एलर्जी की समस्या ज्यादा होती है। दूसरा कारण होता है आंखों से लगातार गैजेट्स का, कंप्यूटर मोबाइल का उपयोग करते समय पलकों का कम झपकना
1: जी।
2: तो पलक यदि कम झपके तो जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, एलर्जेंस है, उसका कॉन्टेक्ट पीरियड ज्यादा रहता है, तो जिसके कारण एलर्जी की समस्या भी आजकल ज्यादा बढ़ती है।
1: तो एलर्जी अगर आंखों में हो जाए सर, तो किस तरह की परेशानियां हमें दिखाई पड़ती हैं?
2: आंखों में खुजलाहट होना है, आंखों में लालीपन आना, बहुत ज्यादा पानी का आना, जलन होना, ये सारी समस्याएं आती हैं एलर्जी में। और मैं साथ ही बचाव का उपाय भी बताता चलूं
1: जी।
2: तो सबसे पहली चीज है आंखों को मलना नहीं है। जब मलेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, एलर्जी बढ़ती जाएगी, फिर चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी
1: जी, जी।
2: तो इसलिए आंखों को कभी मले नहीं। तो जब मलने जैसी इच्छा होती है तो उस समय क्या करना है, हाथ साबुन से साफ कीजिए और साफ पानी से अपने आंखों को धो लीजिए। ये घरेलू तरीका है जिससे आप एलर्जी, किसी भी तरह की आंख की एलर्जी को बचा सकते हैं, कम करते जा सकते हैं।

0: सर, आंखों की थकान के बारे में आपने कहा, तो थकान होने से आंखों को क्या परेशानी हो सकती है?
1: आंखों का थकान, पहले मैं इसके कारण के बारे में बात करूंगा। गैजेट्स का जब आजकल हम लोग उपयोग करते हैं, खास करके मोबाइल का, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के कारण मोबाइल का उपयोग काफी बढ़ा है, तो इसमें दो तीन चीज गड़बड़ी क्या होती है। एक तो एक जगह हम लोग लगातार लंबे समय तक देखते हैं, दूसरा पलकों को कम झपकाते हैं, तीसरा पॉस्चर गलत होता है, बैठ करके काम नहीं करके थोड़ा लेट करके देखने लगे, झुक करके करने लगे, तो इसमें आंखों में ज्यादा ताकत लगता है, तो उसके कारण आंखों में दर्द, माथे में दर्द, और खास करके इस तरह का दर्द सवेरे आराम रहेगा जब आप सो के उठेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, दिन भर काम किया तो शाम होते होते दर्द ज्यादा होगा, तो ये थकान का लक्षण।
0: सर, आपने दर्द की बात कही है, तो कहीं ये दर्द माइग्रेन वगैरह का भी कारण बन सकता है क्या आगे चलकर?
1: नहीं, माइग्रेन दूसरी समस्या है, ये कारण नहीं बनता है, लेकिन जिन्हें माइग्रेन है उनको माइग्रेन का दर्द भी बार बार होगा और ये मिमिक करेगा, आईस्टन आंख से संबंधी जो थकान है वो माइग्रेन के दर्द को मिमिक करेगा, लोग ज्यादा परेशान होंगे।
0: बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गंदे हाथों से भी आंखों को छू लेते हैं, या फिर कुछ कचरा अगर आंख में चला गया है तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट पानी का छींटा मारते हैं, तो इस तरह करने से आंखों को क्या नुकसान पहुंच सकता है?
1: देखिए, जैसा पहले मैंने बताया एलर्जी से बचाव के लिए कि आंखों को कभी छूना मलना नहीं चाहिए, जब भी आंख को छूना है हाथ साबुन से साफ करके केवल आंखों को साफ करने के लिए छूना है, और साफ पानी से आंखों को धोना एक अच्छा तरीका है, ये हल्की फुल्की एलर्जी को कंट्रोल करता है। छूना कभी भी नहीं, जब भी छूना है हाथ साबुन से साफ करके।
0: जी सर, हम जानना चाहेंगे कि आंखों का ऑपरेशन का जो नौबत आता है तो वो किन किन परिस्थितियों में आता है? सर,
1: सबसे ज्यादा कॉमन है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक लेवल से ज्यादा होने पे जब लोगों को अपने दैनिक काम में दिक्कत होने लगती है, तब उस तरह के मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन की नौबत आती है। हल्की फुल्की मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अपने दैनिक कार्यकलापों में यदि दिक्कत होने लगे, कुछ खतरा हो, डर हो गिर जाने का, चोट लगने का, तब उसमें ऑपरेशन की नौबत आती है। ये सबसे कॉमन है। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे चीज होते हैं जिसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, सबसे कॉमन मोतियाबिंद।
0: तो मोतियाबिंद होने के क्या कारण है सर?
1: ये उम्र जनित है, और साथ में अपने लाइफ स्टाइल रिलेटेड, जैसे बहुत ज्यादा कोई कड़ी धूप अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर होंगे, या फिर धुआं लगेगा, या फिर डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी रहेगी, हरी सब्जी वगैरह ना खाएंगे, तो इस सब कारण से थोड़ा जल्दी प्रेसिपिटेट हो सकता है, अदरवाइज उम्र के साथ ये धीरे धीरे होता ही है।
0: सर, ऑपरेशन के बाद किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जो परेशानी है वो दोबारा ना हो?
1: जब ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन के बाद जब डिस्चार्ज का समय आता है, तो जहां भी ऑपरेशन कराते हैं डॉक्टर या उनके जो स्टाफ हैं वो डिटेल एक चार्ट देते हैं या बताते हैं, जिसमें वो काफी चीजें, जैसे आंखों को किसी भी तरह के चोट से बचाना, आंखों को छूना नहीं है, जिस आंख का ऑपरेशन कराया है उस करवट नहीं सोना है शुरुआती कुछ दिनों में, नहाने के लिए बाल को धोना नहीं है, छोटे बच्चों को गोद में नहीं लेना है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें, और वो जो भी सलाह ऑपरेशन के बाद दी जाती है उसको बहुत ध्यान से सुनना है और उसका पालन करना है।
0: जी। सर, कई बार ऐसा होता है कि आंखों के ऑपरेशन के बाद एक आंख की ऑपरेशन हुई तो दूसरे आंख की रोशनी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो इसके क्या कारण है?
1: देखिए, ये कारण इस तरह का ऐसा कोई नहीं है कि एक का ऑपरेशन हुआ तो दूसरे का कम होने लगा, इसको दूसरी तरह से समझे, मोतियाबिंद उम्र के साथ समय के साथ होना है। जिस एक आंख में ज्यादा मोतियाबिंद हो गया उसका आपने ऑपरेशन करा लिया, दूसरे में फिर समय के साथ आगे बढ़ना है, आगे होना है, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करा लिया इसलिए दूसरे आंख में तेजी से बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता।
0: तो सर, आंखों में रतौंधी भी होने की समस्या होती है, तो ये किस कारण से होती है और इससे बचे रहने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए?
1: रतौंधी के दो तरह के कारण होते हैं, एक तो कारण है विटामिन ए की डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी, तो वो ना होने देना चाहिए। इसके लिए जितने भी रंगीन फल सलाद हैं, गाजर, पपीता, टमाटर, आम के समय में आम, तो ये जितने भी रंगीन फल हैं ये विटामिन ए का रिच सोर्स है, हरी सब्जी, साग, ये सब रिच सोर्स, तो वो रेगुलर खाना चाहिए। दूसरा कारण होता है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसमें रेटिना में जो रात के समय देखने के कण होते हैं वो नहीं, पिगमेंट्स, वो फॉर्मेशन उसका नहीं होता है, तो उसका अभी कोई इलाज आया नहीं है।
0: अच्छा। और सामान्य रतौंधी का इलाज संभव है?
1: विटामिन ए की कमी से यदि हो रहा है तो उसमें विटामिन ए सप्लीमेंट डॉक्टर लिखते हैं।
0: सर, आपने कहा कि एक उम्र के बाद मोतियाबिंद ज्यादातर होने की संभावना हो जाती है, तो लंबे समय तक आंखें हमारी स्वस्थ रह सके इसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?

0: और खान पान में स्पेशली हमें किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए?
1: जो भी शारीरिक दिनचर्या आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, सारे शरीर को, वही दिनचर्या आंखों को मोतियाबिंद से भी लंबे समय तक रोक के रखने के लिए भी वही दिनचर्या की आवश्यकता होती है। जैसे दैनिक आपका जो कार्यकलाप है, टहलना, प्राणायाम और खाने में हरी सब्जी, साग वगैरह, ये सब रेगुलर खाना, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में लेना, फल सब्जी सलाद के रूप में, तो वही चीज जो शरीर को स्वस्थ रखता है वही चीज मोतियाबिंद को भी लंबे समय तक रोक कर रखता है।
0: सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑनलाइन जो क्लासेस चलते हैं जिसकी वजह से बच्चों को स्क्रीन से ज्यादा जुड़ा रहना होता है, बड़े लोग भी बहुत ज्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं सर, चाहे वो कंप्यूटर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, इस तरह की चीजें, तो कितने लिमिट टाइम तक गैजेट्स का प्रतिदिन अगर इस्तेमाल किया जाए तो आंखों में बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं हो सकती, इसके बारे में थोड़ा?
1: ये अलग अलग हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है, इसका कोई एक पैमाना नहीं है कि ये एक घंटा या 15 मिनट या 2 घंटे, लेकिन जिनको भी जितना काम है, जो एसेंशियल वर्क है, आवश्यक काम, तो आवश्यक काम छोड़ करके अनावश्यक एंटरटेनमेंट के लिए लगातार लंबे समय तक यूज करना उचित नहीं है। और जब वर्क कर रहे हैं तो उस समय भी कुछ बातों का ख्याल रखना है। ड्यूरेशन से ज्यादा जरूरी है बीच बीच में रेस्ट लेना। जब भी आप वर्क करते हैं गैजेट्स पे तो बैठ के कीजिए, पलक झपकाते हुए 1 मिनट में 15 से 20 बार पलक झपकाइए, 15 मिनट वर्क के बाद 20-30 सेकंड के लिए 20 फीट या उससे ज्यादा दूर देखिए, 1 घंटा जब वर्क हो जाए तो 5-7 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इस तरह से अपने गैजेट्स के यूज को डिसिप्लिन वे में कीजिए तो थोड़ा लंबे समय तक वर्क कर सकते हैं। नॉन एसेंशियल वर्क को हटा दीजिए, जो जरूरत नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए केवल कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है शारीरिक श्रम करना, हाँ वो ज्यादा अच्छा है शारीरिक स्वास्थ्य।
0: आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि बहुत सारे लोग हैं कि सोते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं या फिर सो करके तुरंत उठ करके मोबाइल देखते हैं, तो इससे आंखों को क्या परेशानी हो सकती है?
1: देखिए, ये एक तरह से इसको विडंबना कहेंगे कि दिन भर जब हम काम करते हैं, जो आजकल ज्यादातर लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो आंख के जरिए ही काम करते हैं, चाहे कंप्यूटर पे काम करें चाहे फाइल वर्क करें, आंख का काम होता है। आंख का काम सवेरे सो के उठने से रात सोने तक होता है। शरीर आपका बैठा हुआ है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब आप रेस्ट के लिए आते हैं तो उसी शरीर को फिर से आप आराम दे रहे हैं लेकिन आंख को फिर काम पे लगा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। बेहतर ये है कि दिन भर जब आपने आंख से काम लिया, शरीर को आराम दिया, तो आप जब एंटरटेनमेंट की बात आती है, रात सोने के समय की बात आती है, तो उसके पहले थोड़ा वॉक करें, टहले, आंखों का काम न करें, आंखों को रेस्ट दें।
0: तो सर, आपने अपना कीमती समय दिया और आंखों की देखभाल से संबंधित आपने बहुत सारी जरूरी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका और सभी श्रोताओं का धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना भेंट वार्ता, आंखों के ऑपरेशन के बाद किन बातों का रखे ख्याल। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर ANC और भेंट करता थी श्वेता रानी।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम गीत संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नेहा त्रिपाठी और साथियों को आप सुन रहे थे। इस गीत में आप सुन रहे कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

नेहा कक्कड़ और साथियों के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संगीत समाप्त होता है। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:59 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
3: Across 10 of the 11 active missions.
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत,

0: और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एकतरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
3: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम

0: प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है? कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी। वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. U.S. launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India skipped history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
3: Peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security since the very inception of the United Nations. And India has always been in the forefront of discharging that responsibility. Our cumulative contribution is nearly 300,000 deployments in about 50 missions worldwide. Currently, we have 4,300 personnel across 10 of the 11 active missions. As we all know, most of these missions are in Africa. Few countries would have our experience in preparing peacekeeping to be future ready.
2: If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near the Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. State governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been asked to coordinate with the bereaved families for the onward transportation of the bodies to the home.

0: victory, which is exactly what Jannik Sinner did in retaining his title at Wimbledon. Having dealt with an almighty scare in the first round from the virtually unknown Miomir Kecmanovic, who took him to five sets, the Italian became the first man in 48 years to survive and win the cup at London's SW19. Resilience has been the remarkable quality in Sinner's journey to a fifth Grand Slam in the final. And finally, Amar Chitrakatha, set to launch Hindustan Aeronautics Limited, HAL, comic book, reports Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. U.S. launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in a one-off women's test. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से भाग लेने की अपील की। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू को किया गिरफ्तार। ईडी ने 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्ति की जब्त। श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की समीक्षा बैठक। ड्रोन एआई और सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए। कल तक चुनौती की सुविधा। और राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज होने वाली बैठक और चुनाव पाठशाला के सफल आयोजन में सहयोग की अपील की।
3: सभी पोलिंग स्टेशन में बीएलओ बीएलए 2 का सेकंड मीटिंग, साथ में चुनाव पाठशाला भी आयोजन किया जा रहा है। मीटिंग में अभी वर्तमान में रोल में है उसका नाम में ये एसडीडी सूची बोला जाता है, उन्हीं के बारे में चर्चा होगी। उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगी, अतः एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेट डुप्लीकेट, भारत का नागरिकता यहाँ छोड़कर दूसरा देश में नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो उनका भी नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगी, उसका बारे में चर्चा होगी। फिर 22 तारीख को उसी सूची फाइनल किया।
2: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि चतरा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, गुमला और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा अन्य क्षेत्रों में भी शीघ्र शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मतदाताओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत घर घर पहुंच रहे बीएलओ को इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में पूरा सहयोग दें। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं, राजनीतिक दलों और मीडिया से अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर रांची स्थित रिम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने स्मृति क्विज प्रतियोगिता और शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सकों, संकाय सदस्यों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉ. प्रिंस गुप्ता ने प्लास्टिक सर्जरी के वर्तमान परिदृश्य, नई तकनीकों और करियर की संभावनाओं पर व्याख्यान दिए। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रियंका करकेट्टा ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी केवल सौंदर्य उपचार तक सीमित नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण और जटिल शल्य चिकित्सा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख

0: लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी नक्सली रविंद्र गंझू को गिरफ्तार किया है। उस पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपए और एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। झारखंड में माओवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लगभग 3,87,00,000 रुपए मूल्य की 11 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्रा ने आगामी राजकीय श्रावणी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सहित सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। डीजीपी ने अधिकारियों को संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी, ड्रोन और एआई आधारित निगरानी, महिला सुरक्षा तथा विभिन्न एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में हुए ज्वेलर्स डकैती कांड में मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी।
1: डकैती की घटना हुई थी, उस कांड के मुख्य साजिशकर्ता शमशेर आलम को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त एक पिस्टल, दो मैगजीन, दो जिंदा गोली, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, इसी के साथ करीब 370 ग्राम सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ, 160 ग्राम चांदी जैसा दिखने वाले पदार्थ बरामद किया गया है। इस घटना में संलिप्त अन्य सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
0: रांची में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि डोरंडा थाना क्षेत्र से 4 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
2: डोरंडा थाना अंतर्गत साकेत नगर एरिया है, वहाँ से सबसे पहले मुकेश कुमार को पकड़ा और मुकेश कुमार के पोजीशन से 10 ग्राम शुगर की पुड़िया मिली। उसके पश्चात आगे जब कंटिन्यूअसली रेड करेगी तो संदीप कुमार दांगी है, इनकी पोजीशन से लगभग 1350 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर मिली है, तो इन टोटल 1444 पुड़िया ब्राउन शुगर पुलिस के द्वारा बरामद की गई है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए हैं। वेबसाइट neet.nta.nic.in पर आवेदन नंबर लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देखे जा सकते हैं। ओएमआर चुनौती सुविधा कल तक उपलब्ध रहेगी। राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी के साथ भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने मॉनसून की कम बारिश में किसानों को खेती को लेकर सलाह दी है।
3: मॉनसून जो थोड़ा सा है वो बेरुखी भी दिखाएगा, बारिश भी होगा, तो स्थिति को देखते समझते हुए ही जैसा डायरेक्शन जाता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उस हिसाब से ही खेती करेंगे, जिससे कि इस सिचुएशन को हम लोग अच्छे से निपट पाएंगे। आपको प्रेफरेंस धान को ना देते हुए उसको आपको डाइवर्सिफाई करना है, अगर धान लगाना भी है तो आप निचले खेतों में उसको प्राथमिकता दें और ऊपर वाले खेतों में आप मकई है, तिलहन दलहन है, दाल है, इस टाइप का चीजें कर सकते हैं।
0: 22वीं रांची जिला सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2026 में विभिन्न विद्यालयों, क्लबों और अकादमियों के 226 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सांडा और ताउली की 35 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र दिए गए। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने इनामी नक्सली रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है शिकंजा, 20 लाख का इनामी नक्सली रविंद्र गंझू गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी।

15 दिनों में यूनिवर्सिटी सेवा आयोग सक्रिय होगा। प्रभात खबर ने लिखा है भारतीय महिलाओं की लॉर्ड्स फतेह, आज मतदान केंद्रों पर सुनाई जाएगी एएसडीडी की सूची। इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से भाग लेने की अपील की। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू को किया गिरफ्तार। ईडी ने 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्ति की जब्त। श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की समीक्षा बैठक। ड्रोन एआई और सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए। कल तक चुनौती की सुविधा। और राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी

भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 8:44 हुए हैं। कुशीपल में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आजा सनम, आपने सुना इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। इस गीत को लिखा रानी मलिक ने और संगीत दिया अरुण पौडवाल ने।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

पंकज उदास और साधना सरगम को आप सुन रहे हैं फिल्म मोहरा में। इस गीत को लिखा इंदिवर ने, संगीत दिया विजू शाह ने, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी से दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:59 हुए हैं। आइए अब आपको ले चले हमारे मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।
1: घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गीत इस ब्रेक के बाद फिर से सुनिएगा।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में बंडी और बबली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे राजशेखर और संगीतकार कृष्णा। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। सुनते हैं बाकी गीत।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गाना। नेहा कक्कर और साथियों की आवाजें हैं।

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजों में आप सुन रहे थे। बोल जयदीप साहनी ने लिखे थे, तर्ज सलीम सुलेमान ने बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की थी, समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा ओ हम नवा,
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
3: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दूं।
1: संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीतकार रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

सन 1948 में रोशन मुंबई चले आए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक हो गए। खुर्शीद अनवर उन दिनों फिल्म सिंगार को संगीत से सजाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान रोशन की भेंट हुई फिल्मकार किदार शर्मा से, जिन्होंने सन 1949 में रोशन को अपनी फिल्म नेकी और बदी के संगीत निर्देशन की कमान सौंपी। हालांकि फिल्म नेकी और बदी असफल रही, रोशन को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति का रास्ता मिल गया। इसी दौरान उन्होंने फिल्म बावरे नयन में संगीत दिया। बावरे नयन के निर्माता थे गायक।

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं, बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग, सभी सुनने वालों को हमारी ओर से जोहार नमस्कार। सफर है ये जाना पहचाना, और इस सफर में आपके साथ मैं अंजना। रात खामोशी से बीत गई तो क्या हुआ, सुबह की उजली किरण आशाओं के फूल सजाए आपकी राह देख रही है। कहते हैं ना, सपनों को सच करने के लिए हौसला बुलंद होना चाहिए, और आसमानों को तो वही छूते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं।

श्रोताओं, पॉजिटिव सोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ना ही जिंदगी की पहली शर्त है। उत्साह जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके पास यह है तो जीत आपकी है। हाँ श्रोताओं, किसी भी काम में निरस्ता आपके काम को प्रभावित करती है। एक सफल जीवन के लिए बैलेंस बनाना जरूरी है। थक हार कर मायूस होना समझदारी नहीं, उठकर संभलना जरूरी है। इसलिए जीने की उत्साह बनाए रखे, यह हर परिस्थिति से आपको बाहर निकालने में मदद करेगा। अंत में हम यही कहेंगे इस विचार के साथ कि संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है।

श्रोताओं, आइए जानते हैं आज का इतिहास। July 1223 में फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके बेटे लुई फ्रांस के राजा बने थे। आज के दिन 1636 में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। 1789 में आज के दिन फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1850 में मशीन द्वारा जमाई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था आज के दिन। 1914 में पहले तरल ईंधन आधारित रॉकेट की डिजाइन का पेटेंट रॉबर्ट एच गोगार्ट ने हासिल किया था। 14 जुलाई 1927 को हवाई द्वीप में विमान की पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू की गई थी। आज के दिन 1951 में CBS चैनल पर घुड़दौड़ के रूप में किसी खेल कार्यक्रम का पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ था। 1957 में

14 जुलाई को जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म हुआ उनके बारे में भी आपको बता दें। 1856 में गोपाल गणेश आगरकर का जन्म हुआ था, ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1900 में प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देशबंधु गुप्त का जन्म हुआ था। 1909 में ईएमएस नंबूद्रीपद का जन्म हुआ था। 1902 में चंद्रभानु गुप्त का जन्म हुआ था, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 1942 में के कालीमुत्तु का जन्म हुआ था, ये नवी लोकसभा के सदस्य थे।

14 जुलाई को जिन महत्वपूर्ण शख्सियत का निधन हुआ उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। 1896 में राजा लक्ष्मण सिंह का निधन हुआ था। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। 1975 में हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक मदन मोहन का निधन हुआ था आज ही के दिन। 1982 में रमन विश्वनाथन का निधन हुआ था। ये जाने माने भारतीय चिकित्सा विज्ञानी थे। 2003 में लीला चिटनिस का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी। और 2008 में आज के दिन वाई वी चंद्रचूड़ का निधन हुआ था। ये भारत के भूतपूर्व 16वें मुख्य न्यायाधीश थे।

श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है। यहाँ कई पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन जीने की कला को जिसने समझ लिया, उसका जीवन खुशहाल होता है। हर परिस्थिति के साथ चलना, साथ ही मुश्किलों से निकलना, इसे ही तो जिंदगी कहते हैं। जीवन को खुशहाल बनाना है तो सकारात्मक सोच के साथ चलना होगा, क्योंकि यही तो वह दृष्टिकोण है जो विपरीत परिस्थिति

स्थितियों में भी अवसर, समाधान और अच्छे पहलू को देखने की क्षमता प्रदान करता है। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में वक्त तेजी से बदल रहा है। ऐसे में नकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति मानसिक तनाव के कारण खुद को असहाय महसूस करता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि किसी भी समस्या का समाधान तनाव नहीं है। अगर सकारात्मक सोच हो तो यह तनाव की स्थिति में भी उससे बेहतर तरीके से निकलने की क्षमता रखता है। पॉजिटिव विचार खुद पर भरोसा करना सिखाता है। इससे आत्मविश्वास मजबूत होता है। अपने कार्य और जीवन के प्रति अधिक जागरूक करने में यह मदद करता है। जीवन को खुशहाल और तनाव मुक्त बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अपने जीवन में कई छोटी या बड़ी चीजों के लिए आभारी होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार कर उनके समाधान ढूंढना, अपने दैनिक जीवन में उन पलों को ढूंढना जिनमें हंसी छुपी हो, खुशी छुपी हो। अपने जीवन में सकारात्मक लानी हो तो आशावादी दृष्टिकोण रखें। जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें। जरूरी नहीं उम्मीदों और ख्वाबों के अनुसार सब कुछ प्राप्त हो जाए। ना उम्मीद होने से बेहतर है कि अच्छा है खुद को बेहतर की ओर लेकर जाना। सकारात्मक सोच से मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन में सुधार होता है। मन स्वस्थ तो होता ही है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। जीवन का आनंद तो सकारात्मक भाव में है, जो चेहरे पर मुस्कान और खुशहाली लेकर आता है।

श्रोताओं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय है, इसलिए मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में भी आज बादल छाए रहने का अनुमान है, साथ ही साथ रुक रुक कर हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान होगा 32 डिग्री सेल्सियस और आज का न्यूनतम तापमान होगा 26 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय का समय था 5:10 और सूर्यास्त होगा 6:39 पर।

श्रोताओं, भारत सरकार की योजनाओं में से एक महत्वाकांक्षी योजना है विकसित भारत 2047, जिसका उद्देश्य है देश की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में बदलना। इस योजना में आम नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए जन भागीदारी और जन शक्ति आवश्यक है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में सक्रियता से भाग लेना और देश हित की भावना के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना, युवाओं और नागरिकों को कौशल आधारित शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विशेष रूप से AI और अनुसंधान जैसी बातों पर वैश्विक स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि भारत दुनिया के अन्य विकसित देशों के प्रतिस्पर्धी बन सके। सतत विकास की बात करें तो एक स्थायी जीवन शैली अपनाकर, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर पर्यावरण को संरक्षित रखने में भागीदारी निभाना। समानता और सामाजिक उत्थान जरूरी है एक विकसित देश के लिए। ये तभी संभव है जब समाज में भाईचारे और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग को विकास का लाभ मिल सके। विकसित भारत आम नागरिकों के लिए अवसर भी प्रदान करेगा। देखा जाए तो डिजिटल क्रांति के इस युग में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से बैंकिंग सेवाएं, सरकारी सेवाएं और ई कॉमर्स जैसी सुविधाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। साथ ही स्वरोजगार स्थापित कर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी अवसर मिलेगा। आगे स्टार्टअप और नवाचार नए व्यापार में खुद को स्थापित करने का अवसर है।

कृषि आधुनिकीकरण अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। कौशल आधारित नौकरियां वैश्विक स्तर पर रोजगार के नए द्वार खोल रहे हैं, लेकिन विकसित भारत 2047 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई सारी चुनौतियां भी हैं। श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अलावा आज भी इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता का अभाव है। भारत एक कृषि प्रधान देश है तो सारी सुविधाएं उन तक पहुंचने में वक्त लगेगा। सभी नागरिकों तक सस्ती और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करना भी होगा। आय में असमानता को दूर करना होगा। बढ़ती जनसंख्या के बीच प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाना होगा। ये एक कठिन कार्य है। बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, समानता का अधिकार, इन सब चुनौतियों से भी निपटने की आवश्यकता है।

श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अखबारों से कुछ मुख्य खबरें।

राज्य सरकार से मिली अनुमति, ऑनलाइन नामांकन का पोर्टल खुला। संत कोलंबा और केबी महिला कॉलेज में जारी रहेगी संस्कृत उर्दू की पढ़ाई। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवि प्रबंधन विभाग में सोमवार को रोजगार कौशल विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। धनबाद की सहायक प्राध्यापक डॉ. मृणालिनी पांडे ने वर्तमान प्रतिस्पर्धा रोजगार बाजार की आवश्यकताओं, प्रभावी संचार कौशल, व्यक्तिगत विकास, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान, पेशेवर आचरण और साक्षात्कार की तैयारी पर विस्तार से जानकारी दी। ताइक्वांडो में शिशु विद्या मंदिर के खिलाड़ियों ने जीते कुल 26 पदक। आनंदा कॉलेज में चांसलर पोर्टल हेल्प डेस्क शुरू। आनंदा कॉलेज में स्नातक स्तर 2026-30 के नामांकन को लेकर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए चांसलर पोर्टल हेल्प डेस्क संचालित की जा रही है। चांसलर पोर्टल के द्वितीय चरण के नामांकन की तिथि 17 जुलाई निर्धारित की गई है।

4,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई से वाहनों का संचालन शुरू होगा। एक्सप्रेसवे से अब 35 से 45 मिनट में लखनऊ कानपुर का सफर होगा आसान। प्रतिष्ठित तमिल गीतकार और वरिष्ठ लेखक आर वेरामुत्तु को सोमवार को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। यह वह पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक और पहले तमिल कवि बन गए हैं।

जुरासिक पार्क के एक्टर सैम नील का दुर्लभ बीमारी से निधन। कोलंबिया में भारत का स्वर्णिम परचम, 87 देशों के बीच बना संयुक्त विश्व विजेता। फिजिक्स ओलंपियाड में देश के 5 छात्रों ने जीते गोल्ड।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा, वैश्विक मानकों पर होगी उच्च व तकनीकी शिक्षा।

मौसम में बदलाव के कारण लोग हो रहे हैं बीमार, भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी। हजारीबाग के अस्पतालों में बढ़े वायरल और टाइफाइड संक्रमण वाले मरीज, ओपीडी में आने वाले मरीजों में 20% वायरल व टाइफाइड से संक्रमित हैं लोग। डेंगू संदिग्ध मरीजों की संख्या में भी हुआ है इजाफा, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। श्रोताओं, अब कुछ काम की खबरें। डिजिटल लॉकर पर पाएं ईपीएफओ की सेवाएं। अब आप ईपीएफओ की सेवाएं डिजिटल डिजी लॉकर पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत यूएएन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और स्कीम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर डिजी लॉकर में रख सकते हैं। एटीएम ब्लॉक करने की इस नंबर पर कॉल करने की सुविधा दी गई है। एसबीआई के ग्राहक अब एटीएम या डेबिट कार्ड गुम होने पर एक फोन कॉल के जरिए उसे ब्लॉक करा सकेंगे। एसबीआई ने टोल फ्री नंबर 1800-1234 और 1800-2100 जारी किया है। फोन कर ग्राहक मांगी गई जानकारी देकर एटीएम ब्लॉक करा सकेंगे। आप साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो अब भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं हेल्पलाइन नंबर 1930 या मोबाइल नंबर 9771432133 जारी किया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग के ईमेल पर भी आप शिकायत कर सकते हैं दर्ज।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:59 हुए हैं। आइए अब आपको ले चले हमारे मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजें। लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ गाना, लेस्ली लेविस और हरिहरन का संगीत एल्बम आत्मा।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया। एक और
2: आ गया। कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल, शब्दकार साहिर होशियारपुरी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। अलीशाज लव नोट्स इस एल्बम का गाना, अलीशा की आवाज, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है संदीप चौटा का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: चांदनी इस एल्बम का गाना वनिता सिंह की आवाज, देव कोहली के बोल, संगीत उत्तम सिंह का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश तलत अजीज की आवाज, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत समीर का, एल्बम खूबसूरत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: पीस कीपिंग हैज बीन अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: अक्रॉस 10 ऑफ द 11 एक्टिव मिशंस।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार 3री रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने। पहला जो गीत है ये अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खां के बोल।

लो मैं चमन को चला वीरन से, क्षमा है कब से जुदा परवन से, अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: संगीतकार मदन मोहन के संगीत बद्ध किए हुए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं आज की यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये है खजांची फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में देख कबीरा रोया इस फिल्म का गाना। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना, संगीत मदन मोहन का, फिल्म का नाम हीर रांझा। और अब आपको सुनवाते हैं हंसते जख्म इस फिल्म का गाना, एक बार फिर आवाज लता मंगेशकर की, बोल कैफी आजमी के।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। लैला मजनू फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सहे लुधियानवी के बोल हैं।

संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, फिल्म का नाम भाई भाई।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरीला सफर इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो इबारत हमने पोस्ट की है वो सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं कि संगीत की अनेक विधाएं होती है। संगीत गजल के रूप में भी है और कव्वाली के रूप में भी। कई गीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं। जब पसंद की बात हो तो सबके अपने ख्याल हैं। संगीत की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि उसके बिना दिल नहीं लगता। संगीत के प्रति दिल में ऐसे अरमान, ऐसी दीवानगी कि सारी सारी रात उनकी याद सताती है। जब संगीत की शैली मधुर हो और कोमल हो, संयोजन सरल हो और भारतीय वाद्य यंत्रों का विशिष्ट प्रयोग हो तो गीत भावपूर्ण रूप में निकलता है। संगीत की कहां कोई सीमाएं होती है, पर खासियत इस बात में है कि उनकी मौलिकता और मधुरता बनी रहे। संगीत के दीवानों की निगाहों को न कारवां की तलाश होती है, ना वे उस बरसात की रात को जिंदगी भर भूल पाते हैं जब उन्होंने गरज कर सावन आते देखा। पसंदीदा संगीत कानों में पड़ते ही ख्याल आता है जो बात तुझ में है किसी और में नहीं। बताइए कौन से हैं आज के गीत। ये आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने इबारत पोस्ट की, आप लोगों ने इसे पढ़ा और बहुत सारी बातें आपने लिख करके भेजी संगीत के बारे में। जी हाँ, आज दो महान संगीतकारों की याद का दिन है, संगीतकार मदन मोहन और संगीतकार रोशन। मदन मोहन के गीत तो हमने आपको यादों की महफिल इस कार्यक्रम में सुनवाए हैं। आज इस कार्यक्रम में यानी सुरीला सफर कार्यक्रम में संगीतकार रोशन के संगीत को हम याद करेंगे। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों के सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों के झरोखों से जीवंत हो उठती है। संगीत की कोई सरहद नहीं होती, यह तो आत्मा की वो बेबाक आवाज है जो हर दीवाने के दिल को सीधे छू कर हौले से कह जाती है कि जो बात इस सुरमई एहसास में है वो कायनात की किसी और चीज में नहीं। एक साथी की बात है कि कोलाहल से भरे जीवन में संगीत से बेहतर शायद ही कोई और विकल्प हो। संगीत सिर्फ सात सुरों में बंधा नहीं होता। संगीत में दुखी से दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य होती है। किसी के लिए संगीत का मतलब स्वयं को सुकून देना होता है और कोई अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति संगीत द्वारा करता है। प्रेमियों के लिए तो संगीत प्रेम की भाषा के व्याकरण जैसा है। अच्छा संगीत बेचैनी कम करता है। घंटों काम कर रहे व्यक्ति का कुछ देर अच्छा संगीत सुनना उसकी रचनात्मक कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। बहुत सारी बातें हैं संगीत के बारे में कहने के लिए। आप रोशन के संगीत के बारे में भी हमें लिख सकते हैं। चलिए पहला गाना सुनते हैं कार्यक्रम का, वल्लाह क्या बात है, इस फिल्म का गाना। जी हाँ, कुछ संगीतकार या बल्कि संगीत के बारे में ही हम कह सकते हैं, जब अच्छा संगीत हम सुनते हैं तो मन से यही बात तो निकलती है, वल्लाह क्या बात है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज है। प्रेम धवन का लिखा हुआ ये गाना है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं।

0: शम्मी कपूर और बीना रॉय पर फिल्माया गया यह गाना, क्या बात है। आप चाहे कितने ही परेशान हो, काम का कितना भी बोझ हो, या किसी और बात का मन में कोई उदासी हो, कोई टेंशन हो, कुछ इस तरह के गाने जब हम सुन लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस बात से परेशान थे। यही तो संगीत का जादू होता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि सुरों की अनमोल साधना, लाइव ऑर्केस्ट्रा का वो सुनहरा दौर, आज जहां कंप्यूटर से संगीत।
1: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का दिया निर्देश। बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी। लोहरदगा के आवासीय विद्यालय में सर्पदंश की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। एसआईआर अभियान में पश्चिमी सिंहभूम की बीएलओ अनीता देवी और विजय लक्ष्मी ने गणना प्रपत्रों का किया 100% डिजिटाइजेशन, बने उत्कृष्ट बीएलओ। झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मलिक का निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर, मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का अधिकारियों को निर्देश

0: दिया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने हायर एजुकेशन और रोजगार परक कोचिंग के लिए 15 दिनों के अंदर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को पूर्ण रूप से कार्यरत करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड करने के लिए सहमति दी गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चाईबासा और सारंडा क्षेत्र के विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत लगभग 3,700 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी राशि मिलने के बावजूद भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण खनन प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो सका। श्री मरांडी ने कहा कि इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
1: जिस क्षेत्र में खदान का इलाका होता है वहाँ लोग एक प्रकार से नरकीय जीवन जीने को विवश हो, लेकिन सारंडा की इस आयरन और खदान से सिंहभूम के डीसी के खजाने में बीएमएफटी पर 3700 करोड़ से अधिक रुपया इकट्ठा हुआ। सब जगह सड़कें अच्छी हो जाती, सब जगह लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो जाता, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस बनते।
0: झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार कल दुमका के सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही कुलपति, कुल सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं और लंबित कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड स्थित आवासीय विद्यालय में 4 छात्राओं के सांप काटने और 1 छात्रा की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले की बूथ लेवल अधिकारी अनीता देवी और विजय लक्ष्मी ने क्षेत्र के सभी गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस उपलब्धि के साथ उनका नाम राज्य के बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ की सूची में भी शामिल हो गया है। चक्रधरपुर की बीएलओ विजय लक्ष्मी ने बताया कि एसआईआर कार्य में 100% लक्ष्य हासिल करने में सबका सहयोग मिला। वहीं अनीता देवी ने अन्य बीएलओ से भी निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का आह्वान किया।
2: बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत मेहनत भी किया लेकिन मेहनत करने में उतना ही आनंद भी आया। पूरे जनता का भी, पूरे वोटर का भी सपोर्ट रहा, उनके सहयोग से भी हम लोग 100% का हो पाया। अभी जिनके माता पिता का हो रहा है, आगे उनके बच्चे के लिए फायदा होगा।
0: झारखंड पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सहयोग से रांची के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय विशेष अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण में जिला पुलिस, एटीएस और अन्य इकाइयों के 45 अधिकारी प्रभावी अनुसंधान और अभियोजन की बारीकियां सीख रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन आईजी प्रशिक्षण ए विजय लक्ष्मी ने किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक

0: प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन, कोयला तस्करी और उससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखने तथा ड्रोन और अन्य तकनीकी संसाधनों के माध्यम से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। घरेलू शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक दोपहर के कारोबारी सत्र में नुकसान के साथ काम कर रहा था। सेंसेक्स 356 अंक लुढ़ककर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। विश्व युवा कौशल दिवस को लेकर हजारीबाग में 3 दिवसीय शिल्पोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें 100 से अधिक कलाकारों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। खासकर हजारीबाग की लोकप्रिय हजारों साल पुरानी सोहराय कला की झलक देखने को मिली। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि शहर में इन्हें एक बेहतर स्थान भी देना चाहिए ताकि सालों भर इन कलाकारों के उत्पाद बिक सकें।
1: टैलेंट को कमी नहीं, मार्केटिंग का उचित व्यवस्था अगर हो जाए, हमारे जितना भी उद्यमी यहाँ लगे हुए हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जैसे पुराना समरालय भी रो रहा है, वहाँ बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। या झारक्राफ्ट बीमार हो गया है, उसको अगर जीर्णोद्धार करके बढ़िया से उसको बनाया जाए तो वहीं भी इन लोग सारे लोग अपना अगर मार्केटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर इन लोग का जो स्थिति है वो बेहतर हो पाएगा।
0: और अब मौसम। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का दिया निर्देश। बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी। लोहरदगा के आवासीय विद्यालय में सर्पदंश की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। एसआईआर अभियान में पश्चिमी सिंहभूम की बीएलओ अनीता देवी और विजया लक्ष्मी ने गणना प्रपत्रों का किया 100% डिजिटाइजेशन, बनी उत्कृष्ट बीएलओ। झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन। राजनीतिक जगत में शोक की लहर। मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: दीवानगी तो होती है, लेकिन ऐसी भी दीवानगी नहीं कि कुछ खबर ना हो, उसका भी आप ध्यान रखिए। एक साथी हमारी लिख रही है कि उम्र छोटी थी, शादी करके दूर चली आई, सारा भरा पूरा संयुक्त परिवार साथ रहता था, पर मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। उस पर मेरा जन्मदिन पड़ा और मुझे किसी ने भी विश नहीं किया। मैं तो बहुत दुखी हुई और चुपचाप रोती रही। उस समय तो मुझे लगा कि कोई बहुत ही बड़ा गम मिला है मुझे, लेकिन रेडियो पर गाना बज रहा था समझौता गमों से कर लो, और तब मन को चैन आया। एक साथी की ये बात कि जब भी परेशानी होती तो भगवान के मंदिर में जो भजन गा रहे होते हैं या भजन बज रहे होते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, वहीं रुककर हमारा भी भजन गाने का मन बहुत करता है। और एक साथी लिखते हैं कि हमारे जीवन में संगीत हर क्षण व्याप्त है, यहाँ तक कि हम रोते भी हैं तो सुरों में रोते हैं और गम हमसे दूर भाग जाता है। एक साथी की ये बात की है कि हमारी कॉलोनी में एक बांसुरी वाले भैया बांसुरी बेचने निकलते हैं, उनकी बांसुरी सुनकर हम तो अपना काम वाम छोड़कर बस सुनने लगते हैं जब तक वो दूर नहीं चले जाते। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत हमारे जीवन का एक हिस्सा है। बचपन में माँ लोरी सुनाती है, स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं, कविताएं ऊंचे स्वर में गाकर आनंद लेते हैं, जवानी में हम प्यार भरे गीत सुनते हैं, रेडियो के साथ गाते हैं, फिर रियाज न होने के कारण आवाज में संगीत नहीं रहता। मराठी में इसे कंठ फूटने कहते हैं, मतलब आवाज में वो सुर वो लय तान नहीं होती, फिर भी हम मन ही मन कुछ गाकर अपना दिल बहलाते हैं, बुढ़ापे में भी कुछ यादगार गीत गाते हैं, भजन करते हैं। इस तरह संगीत हमारे जीवन का हिस्सा

बना रहता है। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। और अब बावरे नैन इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। गीता दत्त और मुकेश की आवाज है इसमें और संगीत आपको पता ही है रोशन का। राज कपूर और विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया ये गाना है। लिखा किसने है ये आप हमें बताइए।

बावरे नैन फिल्म का ये गीत आपने सुना, केदार शर्मा का लिखा हुआ ये गाना। एक साथी ने लिखा है कि मंजू जी, घर में तो प्राय ऐसा होता ही रहता है कि कभी किसी बात पर किसी से बहस छिड़ गई या छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई यूं ही किसी छोटी सी बात पर हो जाता है, तो फिर उस स्थान से हटकर दूसरे कमरे में जाकर शांति से बैठकर गीत सुनने लगते हैं। रेडियो पर विविध भारती तो नित्य प्रतिदिन बजता ही रहता है, चाहे वो बजने वाला गीत कैसे भी मूड का हो, पर अपने बिगड़े हुए मूड को बदल ही देता, यही तो होता है संगीत का जादू। एक साथी की ये बात है कि संगीत मन की दवा है, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं को संतुलित करने और मन को शांति देने का माध्यम भी है। जब मन उदास होता है, जब मधुर संगीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है और तनाव को कम कर देता है, संगीत भाषा और सीमाओं से परे जाकर सीधे हृदय से संवाद करता है। भजन, गजल, लोकगीत या शास्त्रीय संगीत, हर स्वर में मन को सुकून देने की अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है कि संगीत को आत्मा की भाषा और मन की सबसे प्रभावी दवा कहा जाता है। एक साथी ये बात लिखते हैं कि मानव ने रचाया संगीत तो ठीक है, पर कभी सोचा है कुदरत के संगीत के बारे में? भंवरों के पंख का गुंजन, हवा से लहराते पत्तों का गुंजन, अरे सागर की गहरों का संगीत, लहरों का संगीत, वो भी तो याद कीजिए। एक साथी की ये बात कि कई बार संगीत मन को असीम सुकून दे जाता है। मेरे पापा जो आज डिमेंशिया से ग्रस्त है, उन्हें पुराने हिंदी गीत बेहद पसंद है। जब भी वे रेडियो या टीवी पर ये गीत सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक अनोखी खुशी आ जाती है। उनका सबसे पसंदीदा गाना है जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ये बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि मंजू जी, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही विविध भारती पर संगीत सुनते हुए गुजार दिया है। कॉलेज के समय रेडियो पर और नौकरी में कंप्यूटर और रिटायरमेंट के बाद भी वापस रेडियो पर कुछ भी हो, संगीत जीवन की एक ऐसी धारा है जिसको मैं छोड़कर नहीं रह सकता। एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बात उन दिनों की है जब मेरी स्वर्गीय माँ बहुत बीमार थी और बिस्तर पर थी। मैं उनके पास बैठा रहता था जब विविध भारती को सुना करते थे। उन पर चलने वाला मधुर संगीत जो माँ की पहली पसंद थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनके चेहरे का वह सुकून देखकर मैं भी कुछ राहत महसूस करता था। सच, संगीत बीमार व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला देता है। चलिए इस मुस्कान को थोड़ा और हम बड़ा करते हैं। मल्हार फिल्म का गाना बड़े अरमानों से, ये गाना लता जी और मुकेश जी की आवाजें हैं इसमें। रोशन का संगीत है ये तो आपको पता ही है, और गीतकार कौन है ये आपको बताना है।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना, इंदिवर का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि गरजते बरसते जब सावन आता है तब बारिश की बूंदें भी एक ताल में बरसती।

संगीत एक अंतहीन समंदर है जो कभी लोकगीतों की मिट्टी की खुशबू में महकता है तो कभी सूफी कलामों की रूहानी तान में गूंजता है। हर दिल की धड़कन का अपना एक सुर होता है और यही वजह है कि उदास शामों से लेकर जश्न की रातों तक संगीत हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। धुनों का ये जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसानी जज्बात दीवानगी के हदें पार कर जाते हैं, चैन खो जाता है और बस सुरों के साए में सुकून मिलता है। जब किसी रचना में बांसुरी की सुरीली गूंज और सितार की झनकार गुली हो और उसके बोल सीधे रूह को छूते हो तो वो संगीत सदाबहार बन जाता है। ये एक बात हमारे साथी ने लिखी है और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत प्रेमी के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो सांस की तरह होता है। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब एक राग समझ लेता है। खुशी में सुर ताल नचाते भी हैं और दर्द में वही सुर कंधा बन जाते हैं। नींद न आए तो लोरी बन जाता है और टूट जाए तो दिल को मरहम का भी काम करता है। संगीत प्रेमी के लिए हर सुबह एक नया आलाप और हर रात एक अधूरी बंदिश। वो भीड़ में अकेला होकर भी संगीत के साथ कभी अकेला नहीं पड़ता। शहर में हो या खेत खलिहान में, काम के बीच में हो या फुर्सत के पलों में, कहीं न कहीं एक तान उसके भीतर बसती रहती है। किसी अपने की याद आए तो पुराना गाना जख्म कुरेद देता है और वही गाना अगले पल जीने की वजह भी बन जाता है। हार के बाद हौसला चाहिए तो संगीत हौसला बनता है और जीत के बाद जश्न चाहिए तो संगीत जश्न बन जाता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें आपने लिखी है। और चलिए इसी के साथ एक और खूबसूरत गाना नौबहार, इस फिल्म से लता जी की आवाज़।

संगीत का प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि इंसान तो झूमते ही हैं, परंतु रिसर्च में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे भी संगीत के कारण झूमते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो भावना व्यक्त करने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मा को सुकून प्रदान करने वाला सबसे सशक्त माध्यम है, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला साबित होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही होती है, जिसे सुनते हुए दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बातें हमारे साथियों ने लिख के भेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी की ये बात कि हिंदी सिनेमा में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और इसका शानदार तरीके से फिल्मीकरण करने के लिए महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ को कव्वाली का उस्ताद या बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बरसात की रात जैसी फिल्मों में अमर कव्वालियों की रचना रची है। एक साथी ने यह बात लिखी है कि सिनेमा में कव्वाली केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं, तड़प और संवाद को बयां करने का एक सशक्त माध्यम रही है। हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का गुरु रोशन साहब ना तो कारवां की तलाश है, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है, रोशन द्वारा रचित यह कव्वाली कव्वाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए यही सुनते हैं बरसात की रात।

दिल ही तो है इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि गीत और संगीत मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है, आपके सबके मैसेज पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मन की आवाज है, सबके अंदर संगीत का वही स्थान है जो मेरे दिल में बसता है। और एक साथी ने ये बात और लिखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात पढ़ें कौन सी बात छोड़ दें, ये बात

समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पूरा गीत तो नहीं सुनवा पाएंगे, उस गाने की झलक आपको सुनवा देते हैं। नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म के गाने की ये झलक।

नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की एक झलक हमने आपको सुनवाई, मोहम्मद रफी की आवाज, नीरज के बोल और एक शानदार संगीत रोशन साहब का। आज हमने उनको याद किया, रोशन के संगीत को हमने याद किया और आपके बहुत सारी बातें जो आपने लिख करके भेजी उन्हें हमने पढ़ने की कोशिश की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

दोस्तों, इस दुनिया में सभी को इंतजार होता है बारिश का। इंसानों से लेकर जानवरों तक, पेड़ पौधे और सूखी जमीन और जमीन के अंदर पनपने वाले जीव भी। बारिश के आते ही सभी को राहत मिलती है।

हालांकि खेत खलिहानों और गांवों में बरसात का मौसम खुशियां लेकर ही आता है, शहरों में रहने वाले कभी कभार लगातार होती बारिश से असुविधा महसूस करते हैं। इन मुश्किलों को अनदेखा करके पानी के महत्व को समझना जरूरी है। इसीलिए पानी बचाना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है।

0: 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 100

0: और 30 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
1: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन या यार

0: और सोशल मीडिया हैंडल @YARNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म से है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, रजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें

0: की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है पूजा के फूल, इस फिल्म से।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं जेलर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: ये है नौनिहाल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य के कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में सुस्ती को लेकर प्रशासन को संवेदनहीन बताया। श्री सेठ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि केंद्र से मिलने वाले फंड के बावजूद राज्य सरकार की उदासीनता के कारण विकास योजनाएं फाइलों में अटकी हुई हैं। रांची ट्रेजरी घोटाले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा ट्रेजरी अफसरों को क्लीन चिट देने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युल सहदेव ने इस बयान को जांच प्रभावित करने वाला बताया है।
2: हजारों करोड़ का ट्रेजरी स्कैम हुआ, कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सिर्फ छोटी मछलियों तक ये जो है जांच पहुंची है। और जो एसआईटी है उसमें उन अधिकारियों को रखा गया जिनके कार्यकाल में एसपी रहते हुए खुद घोटाले का आरोप लगा। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, लेकिन राज्य के वित्त मंत्री ने इन ट्रेजरी अफसरों को क्लीन चिट दे दिया। कहा इनकी संलिप्तता नहीं है, यानी सरकार पहले से निष्कर्ष पर बैठी हुई है।
1: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आगामी 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद चलो विरोध प्रदर्शन करेगी। रांची में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी डॉक्टर सुधा प्रसाद ने बताया कि पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण को देश में अविलंब लागू करने और परिसीमन की शर्त हटाने की मांग कर रही है।
3: कि अगर आप नारी के इतने हितैषी हैं, इतने सुचिंतक हैं, तो 2023 में ये पारित हो चुका था, इसको आप त्वरित लागू कर दे। आपकी मंशा साफ नहीं है, परिसीमन लागू करना चाह रहे हैं, इसमें बीजेपी अपना स्वार्थ देख रही है, परिसीमन ये अपने हिसाब से कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मन्नान मल्लिक के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कई अन्य मंत्रियों व विधायकों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभी नेताओं ने इसे राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: लोहरदगा के कुड़ू में आवासीय स्कूल में सांप काटने से एक छात्रा की मौत और तीन के घायल होने के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। घायल तीनों छात्राओं की स्थिति अभी खतरे से बाहर है। फुलमनिया उरांव का इलाज रांची स्थित रिम्स में जारी है, जबकि अनीशा और मनीषा का उपचार लोहरदगा सदर अस्पताल में किया गया। पलामू में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्र का वितरण तेजी से जारी है। अधिकांश प्रखंडों में 94 से 98 प्रतिशत घरों तक प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। वितरण में डाल्टनगंज और डिजिटलीकरण में विश्रामपुर प्रखंड सबसे आगे है। प्रशासन ने मतदाताओं से समय पर प्रपत्र भरने की अपील की है। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में अगले महीने से बोन मैरो की जांच पूरी तरह मुफ्त शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी सैंपल यहां भेजे जा सकेंगे।
1: कोल्हान के मरीजों को अब बोन मैरो जांच के लिए निजी पैथोलॉजी लैब या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल में अगले महीने ये महत्वपूर्ण जांच सुविधा पूरी तरह से निशुल्क शुरू होने जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी सैंपल एकत्र कर जांच के लिए सदर अस्पताल भेजे जाएंगे। वर्तमान में इस जांच के लिए मरीजों को 4,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही गंभीर बीमारियों के निदान और उपचार में तेजी आए। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: गोड्डा के अंतर्राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट खिलाड़ी देवगन मरांडी भारत नेपाल प्रतियोगिता जीतकर झारखंड लौट आए हैं। नेपाल के खिलाड़ी को हराकर देश का मान बढ़ाने वाले देवगन का उनके गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सीमित संसाधनों के बावजूद इस बड़ी सफलता को हासिल कर उन्होंने युवाओं को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: नमस्कार। कैसी हो चंचल?
2: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
1: हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है उसमें यही हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार करते रहते हैं।
2: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
1: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
2: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
1: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें

0: अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
1: हाँ।
0: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं,
1: हाँ।
0: इतने हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं और घर के जब हम 4 सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में किसी ना किसी से संपर्क में लगे, और वहाँ आप ही संपर्क नहीं है, जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है।
0: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
1: तो हमारे साथ ही इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बात सेहत की हुई है, हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा खान पान।
0: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
0: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा जहाँ हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं और ये कि उनका इंतजार होता है,
1: और एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
0: मुंह में राम, बगल में छुरी।
1: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा। हाँ। लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें और पहला गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तो मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो है लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे बहुत प्यार करते हैं बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया। तो डिजिटल होती है जो दुनिया है इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। जब पहले जब हमें अगर हम दूर दराज की बातें करें अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे या फिर फोन पर बात किया करते थे या एसटीडी पर जाकर हम जो है वहाँ पर बात किया करते
1: घंटों लंबी लाइन में लगा करते
0: है ना, लगे रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अभी काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है और मिलकर बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तब परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नजरें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहां भी नजरें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
0: अपना मोबाइल चेक करते हैं किसी का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा लगता है
1: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए, ऐसा लगने लगता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए।
1: बिल्कुल
0: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कांटेक्ट जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
1: बिल्कुल शारीरिक रूप से हम वहाँ मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं
0: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
1: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर गीत सुन ले।
0: चलिए

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
7: हाँ, लेकिन चंचल, हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
6: अच्छा?
7: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
6: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट किए हैं, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
7: जी, ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं।
6: हाँ।
7: जो उन्होंने काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
6: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, जे वो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके

0: जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जहां ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहां ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहां। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज। और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है
0: और सही लिखी है ना। वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट।
1: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
1: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे। क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वॉयलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा भी आपने कहा, हम सब बैठकर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है। इस पर हमें बकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
1: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान तो चला गया है, सुन भी लिया जाए गीत।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था और इस गीत में सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे एप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज एप्स आम लोगों को स्टॉक

0: म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल, और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: दाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दी कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई। तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी, इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी, और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना, वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहां काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती है खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022-23 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो चंचल, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में। उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं, कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
0: इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
1: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसके जो मतलब है, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
0: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें

0: करना चाहिए।
1: इसीलिए देखिए हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है, इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये इस अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहां भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
0: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
1: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं, बनाने के तरीके साफ है कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
1: और ये जो अभी मौसम चल रहा है इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है
0: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे शोधा लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खानपान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
1: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई है उन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बहुत ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
1: एक और बात कि तली हुई चीजें जो है बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो ताजा तेल,
0: दोबारा उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहर ही खाना पसंद करती है और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों की बजाय ताजी और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि

0: सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फ़ायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं। यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज़ की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज़्ज़ा रोटी भी बनती है। घर की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट होती है, तो ये जो पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें हम घर में,
1: ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है।
0: और बच्चे इन चीजों से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियां बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना वहाँ बिल्कुल जो बची कुची सब्जियां उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती है, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताजी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश, वो यही कहना चाह रहे थे कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो प्रयोग कर लिए जाएं, और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
0: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है।
1: बिल्कुल सुनाइए।

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी,
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये एक ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण उन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। हाँ। पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सभी जानते हैं, मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है, और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा अच्छा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना, हम कॉपी
1: उदाहरण
0: देके समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता है वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे.
1: हाँ, यानी कि बिल्कुल
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे.
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल. जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत.
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए.
1: नमस्कार.
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक.
2: सखी सहेली.

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लोहरदगा के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को एएसडीडी सूची के कड़े सत्यापन और केवल भारतीय नागरिकों के नाम जोड़ने के निर्देश दिए। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में सुस्ती को लेकर प्रशासन को संवेदनहीन बताया। श्री सेठ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि केंद्र से मिलने वाले फंड के बावजूद राज्य सरकार की उदासीनता के कारण विकास योजनाएं फाइलों में अटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मन्नान मल्लिक के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी आगामी 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद चलो विरोध प्रदर्शन करेगी। रांची में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी डॉक्टर सुधा प्रसाद ने बताया कि पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण को देश में अविलंब लागू करने और परिसीमन की शर्त हटाने की मांग कर रही है। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सघन पैदल गश्ती की। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुस्लिम बस्ती और एस टाइप कॉलोनी जैसे संवेदनशील इलाकों में दुकानदारों और आम जनता से संवाद किया। रांची में आज अभ्यर्थियों ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में आयोग कार्यालय का घेराव किया। आज सुबह छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रश्न पत्र लीक और सीटों की बिक्री का गंभीर आरोप लगाया है। रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने के नगर निगम के अभियान के विरोध में आज फुटपाथ दुकानदारों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। दुकानदारों का कहना है कि बिना नोटिस दिए उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: उस दौरान 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा कैरेक्टर है जी, बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुला यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
3: जी,
2: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पर।
3: अच्छा।
2: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो अच्छा। प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में। मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
3: जी।
2: दे लाइक्ड इट, दे शॉर्टलिस्टेड। कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई एंड आई जॉइंड द थिंग। मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
3: जी
2: जाके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी, और इसके

0: हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था.
1: हाँ,
0: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा.
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने का.
0: हाँ, उनका एक अलग तरीका है.
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
0: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था.
1: अच्छा.
0: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट करा था तो मेरा कम एक्सपोजर था. वेयरएज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है
1: जी,
0: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी. ये तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे. बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें कम इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं दिया, उनके लिए सब सेम थे.
1: सब सेम.
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले.
1: अच्छा.
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे. मतलब एक ही सीन हमारा, हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार.
1: जी, जी.
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा है.
1: अच्छा. एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते हैं इस रोल के बारे में? क्या बहुत बड़ी बात है.
0: बहुत बड़ी बात है.
1: जी जी जी.
0: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा. और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी. मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की
1: जी,
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस. तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ
1: जी.
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है.
1: अच्छा.
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक. वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है. ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी. स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल
1: जी.
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था. एवरीथिंग इज एट स्टेक. अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं.
1: अच्छा.
0: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए. तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड. तो मैंने वो बोल के देखा, ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक.
1: अच्छा.
0: जो मुझे यहां पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया. मैंने बोला ये करता हूं. तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, वो लेकिन नहीं, ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे. मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना. नहीं नहीं यार, वो गुस्सा हो जाएंगे. लाइक ठीक है छोड़ यार. मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए. मैंने बोला सर एक पॉइंट है. बोले हाँ बोलो. मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है. उन्होंने बोल के देखा. एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है.
1: जी जी.
0: जैसे कैप्टन ऑफ द शिप.
1: बिल्कुल.
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार. बोला गुड गुड. Do it. And it is there in the film.
1: Yes, yes, yes.
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए. आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो ऐसी रहे. आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है.
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है.
0: सोच रहा है तो अच्छी बात है.
1: जी जी जी.
0: तो अच्छा, मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे. मैं कुछ उसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता हूँ.
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी
0: है. बहुत जरूरी है.
1: हाँ.
0: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी के साथ भी वही हुआ.
1: जी.
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलता है कि महात्मा जी ये जो आपका प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी.
1: अच्छा.
0: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है. तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी. और वो जाने को बोलते हैं.
1: अच्छा.
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, पर महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं. और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती करते है कि, तो उसमें मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए.
1: हाँ.
0: थोड़ा सा इमोशनल
1: है वो महात्मा बोल रहा है.
0: मतलब हाँ, जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली बोल, अरे करना यार काइंड ऑफ. तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा. अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला. उसने नहीं नहीं प्रोटोकॉल ये हो जाएगा वो. हाँ. थोड़ी मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है. ठीक
1: हाँ.
0: है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं, तो फिक्शन है. और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: तो बापू पूरा नेशन उनको बापू बोलता था. व्हाई नॉट. उसने नहीं बोल दिया. मैंने राजजी को बोला. सेट पे आए वो जब सीन करना था. हाँ चलो चलो. मैंने बोला राजजी ये. हाँ बोलो. सर ये ऐसा ऐसा है बापू. कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा. हाँ बहुत बढ़िया.

0: ही लाइक इट. सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए, वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो. तो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस.
1: क्या बात है.
0: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा.
1: हाँ, हाँ.
0: कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू. वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई. कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था.
1: अच्छा.
0: तो विक्रम मराठी का काफी कैरेक्टर्स करता है,
1: बड़ा नाम है
0: शोज करता है. हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी, हमने साथ में पहली
1: अच्छा,
0: फिल्म थी.
1: अच्छा.
0: उसने कंटिन्यू किया, उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली. मैं वापस चला गया नागपुर, और वापस आया तो चार साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया.
1: जी
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त हैं. ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना.
1: जी
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर, उतने व्यूअर्स नहीं मिले.
1: हाँ.
0: बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए. आपको 4.5 घंटे का होगा. बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए
1: जी,
0: कि कैसे कैसे हुआ होगा. रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है.
1: अच्छा.
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए.
1: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है. कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ. मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहां पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले. गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता. और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी.
1: आइए सुनते हैं.
0: जी सर.

दो लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह जाती जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है।

0: और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है,
1: जी
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका
1: वेरी
0: है,
1: नाइस
0: प्रगति के मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत। मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ।
0: जी
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय,
0: जी जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रणजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है
0: जी
1: वो रणजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रणजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रणजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो
0: पढ़ाते।
1: शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा रणजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके
1: अगर कोई चीज, एक शब्द बोला है, उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो
0: जी
1: एक
0: जी
1: छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर देके बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो ही विल वर्क ऑन यू।
0: जी
1: एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को
0: अच्छा
1: दिया जाए।
0: अच्छा
1: तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि
0: हाँ
1: एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया
1: ज्यादा
0: जाता
1: जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो
0: है
1: ये छोटी छोटी चीजें हैं
0: जी
1: जो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: उनसे सीखा,
0: जी
1: और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं,
0: हाँ
1: परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी आप सबकी एक अलग अलग वो होती है।
0: जी जी
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है, वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग,
0: जी हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट।
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूं,
0: जी
1: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल
1: जो कि
0: बिल्कुल
1: टेलीविजन में, फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं, मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं है।
1: नहीं आएगा, सही बोला आपने। अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ
1: लाइव परफॉर्मेंस,
0: लाइव परफॉर्मेंस
1: वो चीज जो है वो आपको एक गूजबम्प दे जाती है
0: जी। और उसका जो
1: तुरंत
0: भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त लाइव तुरंत आना है।
1: तुरंत। यू फील सो गुड कि
0: हाँ
1: जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया,
0: जी
1: कहीं पे बहुत ज्यादा आया।
0: जी
1: तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है, और
0: हाँ
1: मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली। और आप 15 दिन, महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे छह छह दस दस पंद्रह पंद्रह लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में। तो
0: जी
1: महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है, जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है। मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल
1: तो दैट दैट मेक्स अ सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर
0: जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे तो उनके सेट आउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे?
1: मैं यहां पे जरूर बताना चाहूंगा कि
0: हाँ
1: लॉक

0: थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है
1: अच्छा,
0: और लाइट कॉमेडी है।
1: तो ये कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
0: हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना।
1: हाँ,
0: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के साथ
1: जी,
0: लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
1: जी, जी।
0: जो शायद कुछ और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, आईपीसी 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था।
1: अच्छा,
0: आईपीसी 324।
1: हुँ.
0: और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
1: जी,
0: जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है।
1: हाँ,
0: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है
1: जी जी,
0: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
1: ओह, क्या बात है।
0: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
1: जी,
0: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारे गमा या
1: अच्छा
0: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया
1: जी जी,
0: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
1: चलिए इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी
1: जी, आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर।
1: जी
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया,
0: अच्छा
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे। और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई,
0: अच्छा
1: छोटा सा किरदार था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी
1: जब
0: जी
1: तक, जैसे मैंने एक साथ ही, मैं अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब,
0: अच्छा
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं।
0: जी
1: रुद्र में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूं,

0: फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं,
1: अच्छा
0: उनको अच्छा लगा, और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा? He said, नहीं नहीं आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाओगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे में मैं घर पे बैठने वाला हूँ क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं।
1: अच्छा,
0: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं।
1: बिल्कुल,
0: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माय वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा कैरेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है। सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था।
1: जी जी जी।
0: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
1: अच्छा,
0: बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
1: जी, जी।
0: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है। तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
1: क्या बात।
0: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
1: अच्छा,
0: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी।
1: अच्छा।
0: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वही 12-13 साल की एक रहेगी। और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी ऐसा।
1: अच्छा,
0: दिखाएंगे।
1: अच्छा।
0: और कैरेक्टर अच्छा था। जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो
1: जी जी,
0: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ? क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो?
1: अच्छा,
0: दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं।
1: हाँ।
0: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन, तो
1: कई शेड्स
0: हो सकते हैं
1: जी।
0: सो जितने रस वो दिखा सकता है उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे निगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है।
1: अच्छा,
0: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था। मैंने सुना तो वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने पासे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू स्टोरी
1: जी जी,
0: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है। इस टाइप का एक कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था
1: जी,
0: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे।
1: अच्छा,
0: तो बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट एक साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में बालाजी टेलीफिल्म्स बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का
1: जी,
0: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल।
1: अच्छा,
0: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही
1: जी जी,
0: दैट वे।
1: क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
0: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूँ कि बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मल भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो। लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं
1: जी,
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रहा ही।
1: हाँ, मकरंद देशपांडे,
0: मकरंद जी थे उसमें,
1: वो फिल्म है,
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत है। उनकी कारवां में वो चले जा रहे हैं
1: जी जी,
0: और ये गाना चल रहा है, और अभी बारिश आने ही वाली है। जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन। और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो। और फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो।
1: क्या बात है। चलिए सुनते हैं यही गीत
0: जी।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनते हैं अपना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का आज का भाग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियां अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं
2: जी।
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
3: श्रोता, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोता, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
2: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न। जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
3: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
3: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
3: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद सर।
4: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
6: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
6: वाह, क्या बात है
7: मैम।
6: हाँ बेटी,
7: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
6: बिल्कुल कहा।
7: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
6: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
7: जी, पहाड़ी।
4: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
6: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
6: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
6: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
6: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: अच्छा, मैंने भी देखा है।
4: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
8: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
6: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
6: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
4: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
6: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
7: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
9: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
6: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
7: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
6: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
5: सॉइल इरोजन,
6: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
9: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
6: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
5: हाँ, जी मैम।
7: यस मैम।
6: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
7: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
6: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
7: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
6: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
9: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो

0: आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुटकी हो सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं।

0: सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी मां सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको हमारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम

0: यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का आज का भाग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कुछ ही देर में प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: राज्य में चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में आज मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत चुनाव पाठशालाएं आयोजित की गईं। इस दौरान बूथों पर मृत, एब्सेंट और शिफ्टेड मतदाताओं की सूचियों का मिलान हुआ। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने वोटरों से सहयोग की अपील की है। राज्य के पूर्व मंत्री और धनबाद के पूर्व विधायक मन्नान मल्लिक का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पूर्व मंत्री को अंतिम विदाई देने के लिए उनका पार्थिव शरीर रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन लाया गया। इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने दारू प्रखंड में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान दिव्यांग पेंशन, पीएम आवास, पेयजल, सड़क और बिजली से जुड़े दर्जनों आवेदन प्राप्त हुए। रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेले के मद्देनजर सुचारू यातायात के लिए 16 से 25 जुलाई तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन और नो एंट्री लागू रहेगी। बिरसा चौक, प्रभात तारा मैदान और तिरिल मोड़ के पास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से साइबर अपराधी नसीरुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि अपराधी के पास से 4,04,500 रुपए नगद, 2 मोबाइल, 3 फर्जी सिम और 1 बाइक बरामद की गई है। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के हुटुकदाग गांव में आज जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग को गोली मार दी गई। घायल बुजुर्ग के पेट से मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर गोली निकाल दी है। पुलिस फरार आरोपी और उसके भाइयों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: शुभ संध्या। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। शाम के 5:02:30 होने को। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का हमारा कार्यक्रम किसान वाणी। आज कंसोल में लाइव आप सब के साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रकाश कुमार राणा और उमेश रजक।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के आज के कार्यक्रम किसान वाणी में स्वागत हो। साथ ही साथ उमेश के दने से जोहार प्रणाम। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में बड़े दिन बाद आयल हथिन प्रकाश भाई। तो प्रकाश भाई तोहरो जोहार प्रणाम। और भाई जानल चाहबो तोहर से कि खेती बाड़ी के का तैयारी चल रहा है, का हाल समाचार है तोहर?
1: जोहार उमेश भाई और किसान वाणी सुने सभी ग्रामीण भाई बहन के हमरो दिने से जोहार स्वागत हन अपन कार्यक्रम में।
0: हाँ।
1: वैसे भी उमेश भाई देखा कि हालचाल तो बेस रहो है, खासकर हमिन के जानकारी रहो है, किसान के बात रहो है।
0: हाँ।
1: और भाई हमिन के कार्यक्रम में विशेषज्ञ जो रे जे राय रहो है, हमिन के जे बातचीत रहो है, ओकर में कहा है कि किसान के कहीं न कहीं एक अलग तरह के दिमाग चला जाए है कहाँ पर।
0: हाँ।
1: खेत बाड़ी में कि हमिन के कौन तरीके खेती बाड़ी से जुड़ल रहे के चाहिए और कैसे खेती बाड़ी से हम उन्नत तकनीक से हमिन आगे बढ़ सको। वैसे में देख लिया कि मौसम हमेशा करवट लेते रहो है।
0: हाँ हाँ।
1: और देखा कि बारिश के समय में झमाझम बारिश बीच बीच में होते रहो है, लेकिन उकर पहले भी कुछ कुछ जो है इनके काम जो है आवेला समय में जो धन रोपनी के भी काम होते।
0: हाँ हाँ।
1: उकर पहले भी हम इनके कम से कम पानी के बचाव, पानी जो हम इनके जमाव रखे के चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: ताकि जब

0: धान का फसल लग जाते हैं,
1: हाँ,
0: उसमें अगर कम पानी पड़ता है तो कैसे पानी के हम इन उपयोग कर सको।
1: बिल्कुल सही बात कहला भाई, एकरे खातिर जो है हम इनके कैच द रेन अभियान चलावल गेलो, और ये देखवा ने कि हम इनके किसान भाई बहन खातिर जो है कृषि के खेती बारी में जो है बहुत बड़का देखा कि मददगार साबित होले हो। देखा कि राष्ट्रीय जल मिशन हो गलो, जल शक्ति मंत्रालय जो है से 2020 में और 2021 में जो है कैच द रेन टैग लाइन के साथ जो है से एकरा जो है वेयर इट फाइल्स वेन इट फॉल अभियान शुरू कर ले लो, ताकि जो है राज्य के सभी किसान भाई बहन के देखबा कि वर्षा के जो पानी हो ओकरा जो है कैसे हम इनके बचा के रखना है, और एकरा जो बचावे खातिर हम के का उपाय हो सको भाई। देखा डोभा हो गलो, तालाब हो गलो, जो बांध बनावल जा रहा है, सब खातिर जो है हम इनके किसान भाई बहन के प्रेरित कर जा सके।
0: और अगर तू बात कहला कि प्रेरणा हमेशा बनल रहे है,
1: हाँ।
0: से वास्ते देखा कि जो है पनिया के जो हमेशा बचवे वास्ते, तो खेत के पानी खेत में रहे वास्ते तालाब जो हो कुआं हो गलो,
1: हाँ,
0: सब जो गर्मी में सूख जाए ने, तो कम से कम गढ़ा का साफ सफाई कर लेवे चाहे वह बेरा,
1: हाँ,
0: तो बारिश शुरू हो गए है तो पानी वहाँ जमा होता है। कम से कम अगर पानी बेस तरी नीचे आ हुआ है तो जमीन में पानी के जो स्तर से बढ़ो है, और सिंचाई में भी कहल जा सको कि पटवन के जो काम हम करो ही अगर पानी भरपूर रहो है तो ओकरो में कम पानी लगो है, माटी का कटाव भी कम हो जाए जब हम इन धन रोपनी के बेस काम कर लो हुई है, तो की तरी देखल जा सको है कि पानी की जरूरत तो हर किसान के हर खेती बाड़ी में पड़ो। उमेश भाई
1: बिल्कुल सही बात कहला। देखा प्रकाश भाई, हम इनके जो है आधिकारिक तौर पर अगर कहिए तो देखवा कि 22 मार्च 2021 के हम इनके जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनावल जा रहा है, और देखबा कि हम इनके माननीय प्रधानमंत्री जो है एकरा जे शुरुआत कर लेतीन, और ये अभियान के उद्देश्य हलो ने कि वर्षा जल संरक्षण कैसे करल जाए, और एक बार देखो जैसन के अभी तो कहला कि जो है हम इनके पानी के स्तर के भी बना के रखना है, बढ़ा के रखना है, और यही अभियान के देखा कि कैच द रेन जो है एक नाम रखल गेले। कहीं ना कहीं देखा कि हम इनके जो बरसात के मौसम हो पानी गिर लो सब बह गेलो, तो एकर खातिर हम इनके देखवा कि तालाब के जो है मरम्मती करा दा, नहर हो नदी नाला है ढोढ़ा है ये सब के अगर हम इन बेस तरी से अगर ओकरा मरम्मती कर दिए बरसात आवे के पहले, अब इधर देखवा ना हम इनके किसान भाई बहन जो धान लगवे थे तो उनका आयर कियारी देखवा ने कि भूस से जो है से छेदा हो गलो,
0: हाँ।
1: तो ओकरा अगर मरम्मती ना कर लाता तो हर खेत में पानी गिर लो सब बह के नदी में चल गलो और फिर समुन्द्र में चल गलो। तो कहीं ना कहीं देखा हम इनके पानी के बचावे खातिर ये सब के उपाय करे पड़तो, ताकि जो है से अगर बारिश ना हो लो तो हम इनके देखा कि झारखंड प्रदेश में जो है सुखाड़ आ जाए, अकाल हो जाए, वर्षा भी देखवा कि बेमौसम हो जाओ, तो हम इनके ई सब खतीले बचावे खतीले हम इनके ई अभियान के जो है जरूर अपनावे पड़तो, और हम इनके जो है छोट छोट बात के ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।
0: और देखा कि बात कहो जा सको है कि बारिश के पानी के कैसे हम इन पकड़ सको ये सहे, हाँ। अभियान चले थो, और हमेशा सरकार पहल करते रहो है कि ऊपर के जो पानी हो और कैसे बच बचाव रखे के चाहिए,
1: हाँ।
0: जे कम से कम गाहे बेगाहे वह पानी के हम इन पटवन के काम ला सको। ये कहा कि देखा कि भारत के जनसंख्या बहुत तेजी गति से बढ़ी थो, और हम इनके पेट के आग जो हो हम इनके अपन अनाज ही बुझा हुआ है, और धान वैसन फसल हो कि कम से कम सालों भर चलते रहो है, और धान देखा कि हर खेता में खेत लगावे के बाद कहे ना परतिये पड़ जाओ, लेकिन खेत में हर चारों दिन से बेस बेस धान लगावो थी, तो
1: हाँ।
0: धान भी लगावे के अपन तरीका तो भर सब जानबे करो थी
1: कि
0: हम इनके प्रमाणित दुकान से बीज लावे के चाहिए, भरोसा रखे के चाहिए, तो वो काम हम इनके समय पर कर लेवे के चाहिए। लेकिन उमेश भाई एक बात ये भी कहल जाबो,
1: हाँ हाँ।
0: कि जब हम पानी के बचाव के बात करो ही है, हम इनके पानी के रख रखाव के बात करो ही है, ताकि पटवन के काम आते, वैसे हमें हम इनके पशु भी तो पालो ही है, तो पशु इनके का है कि जब हम इन गौशाला में या गोहाली में जब हम रखो ही है तो पानी से किचिर किचिर हो जाए, तो जिक्र में है कि भाई मुंह पक्का हो गलो, खुर पक्का रोग जो है हमेशा हावी हो जाए।
1: यानी कि देखवा ने प्रकाश भाई कि कई तरह के जो है बरसात के मौसम में जो है बर बीमारी हो जाए, तो एकर खतीले का है कि वह हम इनके जो है रोग से बचावे खतीले कई तरह के जो है से उपाय करा ओकरा देखभाल करना हो, ताकि जैसे हम इनके बरसात के मौसम में जो पशु थी ओकरा जो है से कई तरह के जो है रोग बीमारी से बचावल जा सको है। एकर में देखवा ने खुर पक्का हो गलो, मुंह पक्का हो गलो, जेकरा FMD को ये गला घोंटू हो गलो, नंगड़ा बुखार, थनेला, लंपी वायरस, ये सब जो है ना एकदम तेज बुखार हो जाए, और एकर में देखवा कि बहुत ज्यादा जो है लार आवे लगो मुंह से, और मुंह में जो है से छाला पड़ जाए, और जो दुधारू गाय है तुम भाई उनको में जो है से दूध की कमी हो जाए, तो एकर से बचाव खातिर भी जो है हम इनके जैसे जे पशु के जे बीमारी हो गलो है ओकरा और सब पशु से अलग रखा।
0: हाँ, बीमारी जे पशु में लग गिलो है
1: हाँ।
0: और कम से कम बेस पशु के पास सटेल मत दा ताकि एने के जे बीमारी उन्हें ना फैले का संक्रामक रोग भी रहो है ने
1: हाँ,
0: जो फैलाऊ है तो भाई बचाव बहुत जरूरी है। कहे की बड़ी मुशक्कत से हम इन दुधारू नस्ल के गाय के खरीदो ही है पालो ही है और बड़ी हम इनके रोजगार रोजी रोजगार ओकरे से चलू है और बारिश के समय में भी हम इनके ध्यान देवे चाहिए कि कम से कम खुला छोड़ देवे से भी बहुत दिक्कत हो। कम से कम चारा के इस्तेमाल जो है हम इनके समय पर करे के चाहिए वहां पर ताकि हर तरह के मिनरल्स हो गलो खनिज लवण जमीन को ही है खनिज अगर ना दे वहां कैल्शियम ना दे वहां तो गाय के जो है पूरा प्रोटीन विटामिन ना मिले से भी दूध के उत्पादन में भी कम हो जाए और हमेशा ध्यान देवे के चाहिए जेकर से हम इनके बेस मुनाफा भी हो सको है ना।
1: देखा प्रकाश भाई एक बात और कहबे के देखा कि हम इनके जो है ना ये पशु में जो रोग हो होकर लक्षण भी हो और हम इन अगर समय रहते लक्षण पकड़ लेला जैसे मुंह खुरपका हो गलो तो ये क्या है कि देखबा कि एकर में जो है पशु के मुंह में छाला हो जाओ खुर के बीच में घाव हो जाए एकर बाद जो है बहुत लार टपके लगो है। गला घोटे की बात करिए तो देखा ये बैक्टीरिया से हो वाला रोग हो एकर में क्या है कि भाई सांस लेवे में दिक्कत होने लगतो तेज बुखार आ जातो और गला में जो है सूजन हो जाए तो देखा कि ये सब जो लक्षण है ना एकरा हम इन अगर समय रहते अगर बचाव के उपचार करिए तो काहे के भाई देखा समय पर हम इनके जो है टीकाकरण करावे के चाहिए और टीकाकरण अगर तू करा देला समय पर तो काहे कि भाई बहुत ऐसा रोग है जेकरा से हम इन बचावल जा सको है ओकरा जो है साफ सफाई रखा साफ सफाई रख के जो है संक्रमण रोग से जो है हम इन जो है जहां रखो ये तो वहां भी जो है सिर्फ फिनाइल के छिड़काव करना बहुत जरूरी
0: बेस काल और देखा कि ऐसे ही जानकारी तो बहुत है ना। तो सबसे पहले अब हम एक लोकगीत सुनो ये लोकगीत के बाद हम इन जानकारी लेके आये लिए कि मकई के साथ साथ घंघरी हो गलो है ना बरई के खेती कौन तरी करे के चाहिए
1: हाँ।
0: और जे महिला किसान काजल देवी बतेथी ने अपन अनुभव के है ना ओकर से पहले हम सुनो ये एगो लोकगीत
1: बिल्कुल तो आवा सुनो ये लोकगीत
2: किसान भाइयों।

है परधान जगत में, लाल बिहारी सत सुना दिल का। हो गया उदंड का है, हो गया उदंड।

0: तो अध्ययन हम इन लोकगीत के बाद बात करो ये जानकारी के हाँ। ऐसे भी लोकगीत भी हम इनके एगो अपन संस्कृति परंपरा के बताओ है कि कहीं न कहीं गीत नाथ भी जो है हम इनके मन के हमेशा बदले के काम करो है। बहुत मन अगर काम करते करते थकान लग जाए ना उमेश भाई
1: हाँ।
0: लगो कि कोई ना कोई लेसन लोकगीत सुनती है जगह से मन हम इनके बहुत ही खुश हो जाए। वैसे भी अपन कार्यक्रम में किसान भाई बहन वास्ते हमेशा बेस बेस गीत भी लेके आबू है तो सुनते रहती न आनंद में भी हमेशा रहते, लेकिन साथ ही साथ जानकारी भी बहुत जरूरी है कि भाई अधर के समय में देखा कि मकई के खेती हो चाहे घंघरी के खेती हो लो बरई के हो गलो हाँ। या तो उड़द के दाल के जो खेती हो जाए तो बहुत सारा खेती ऐसा है जो समय समय के साथ साथ किसान भाई बहन करो थीं और लाभ भी लेवो थीं। और उमेश भाई बतावा तो देखा कि आजकल किसान में या किसान खेती बाड़ी में हाँ। एगो मतलब महिला के बहुत बड़ा योगदान रहो है।
1: देखा प्रकाश भाई खेती बाड़ी जो होने से देखवा कि कंधा से कंधा से मिला के चले वाला खेती बाड़ी हो। अब धर का है कि देखवा बहुत किसान भाई बहन के जमीन ना हो, अगर बात भी देखवा कि जो है लीज पर जमीन लेकर जो है किसान भाई बहन करो थी। और देखवा कि महिला किसान जो उनसे देखवा कि हम इनके जो पुरुष है तो किसान भाई है तो उनकर से ज्यादा मेहनत करो थी भाई। कहीं ना कहीं देखवा गाँव में कि जो है खेत क्यारी में लगा लतुन भाई घास निकौनी हो गलो, चाहे मकई में जो है से मकई लगाना हो चाहे घंघरी बराई लगाना हो, कहीं ना कहीं देखवा कि महिला के बहुत बड़ा योगदान इनके खेती बारी में।
0: बेस्कला वैसे में एक जानकारी भी लेकर आई है कि महिला किसान के का एक भूमिका रोह है अहमियत हाँ। रोह है खेती बारी में अपन अनुभव के साझा करती भाई। जब हम इन बात कर ले है अधर के खेती बारी के में हाँ। तो अपन अनुभव के बतेथिन कि कौन तरी खेती बारी करो थी कैसे अपन घर परिवार के चलावो थी और इनखा से हम इन दने से बातचीत कर ले हथिन उमेश रजक। तो पहले जानकारी के सुनल जाए है ना तो
1: आगू ये बातचीत करे थे महिला किसान हथिन ये काजल देवी
0: हाँ। तो भाई काजल

0: अच्छा,
1: जैसे अगर मतलब लगाए थे इसके
0: हाँ
1: पहले लगाए थे उसमें पानी तो पटाना पड़ता है, गर्मी वाला जो मक्के रहता है।
0: अच्छा, गर्मी का मक्के भी आप लगाए थे?
1: हाँ लगाए थे।
0: अच्छा, उसको आप निकाल लिए? अच्छा,
1: हाँ वो तो निकल गया।
0: तो बिक्री करते हैं कि घर में खाने के
1: हाँ
0: लिए?
1: बिक्री भी होता है, घर में भी खाते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छा, यानी कि आप जो है खेती बाड़ी शुरू से करते आ रही हैं और आपका रुचि भी है खेती बाड़ी में। तो जैसे अभी जो है आप बताए कि आप पास उस चढ़ा देंगे, मिट्टी चढ़ा देंगे, उसके बाद जो है क्या कोई जो है

0: फसल को लगा सकूं
1: हाँ
0: उसमें,
1: बहुत,
0: यानी कि
1: अरे
0: जो है वो एक जो है खुट्टा का काम करता है
1: हाँ
0: डोंटा का। तो जैसे आप देख रहे हैं कि क्यारे के किनारे किनारे आप पेड़ भी लगाए हुए हैं,
1: हाँ
0: शीशम का पेड़ है, नीम। अच्छा,
1: जैसे अबर मतलब लगाए थे, इसके
0: हाँ
1: पहले लगाए थे, उसमें पानी तो पटाना पड़ता है, गर्मी वाला जो मक्के रहता है।
0: अच्छा, गर्मी का मकई भी आप लगाए थे।
1: हाँ लगाए थे।
0: अच्छा, उसको आप निकाल लिए।
1: हाँ वो तो निकल गया।
0: अच्छा, तो बिक्री करते हैं कि घर में खाने के
1: हाँ
0: लिए?
1: बिक्री भी होता है, घर में भी खाते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छा, यानी कि आप जो है खेती बाड़ी शुरू से करते आ रही हैं और आपका रुचि भी है खेती बाड़ी में। तो जैसे अभी जो है आप बताए कि आप पास उस चढ़ा देंगे, मिट्टी चढ़ा देंगे, उसके बाद जो है क्या कोई जो है ये पानी तो बरसाती है, पानी
1: हाँ
0: अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तब क्या मकई गलने लगता है, खराब हो जाता
1: गाछ है, नीम का गाछ है,
0: है?
1: तो
0: हाँ
1: इससे होता है। देखिए करौंज का गाछ में तीतापन आता है,
0: हाँ हाँ
1: तो उससे होता है, जैसे पत्ता उत्ता गिर गया, करौंज गिर गया, वो धीरे धीरे गलता है मिट्टी में,
0: हाँ
1: तो उसमें होता है कि कीड़ा उड़ा नहीं लगता है, फायदेमंद
0: अच्छा, यानी कि जो है मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है,
1: होता है।
0: अगर मिट्टी जो है उर्वरक कम हो रहा है तो वो जो है पोषक तत्वों को पूरा करता है।
1: हाँ
0: का कोई बीमारी वगैरह भी आता है कीड़ा
1: हाँ
0: मकोड़ा या
1: आता
0: कुछ?
1: है, जैसे कीड़ा लग जाता है तो
0: अच्छा
1: फिर उसमें दवाई भी छींटना पड़ता है।
0: हाँ, अच्छा दवाई भी छींटना पड़ता है। तो जैसे दवाई छींटने के लिए बहुत किसान होते हैं कि जो है लापरवाही करते हैं,
1: जी
0: जैसे दवाई का डब्बा जहाँ तहाँ फेंक दिए, तो पैकेट फेंक दिए, कोई बच्चा चाट गया चाहे कोई जानवर चट गया, तो उससे बचने के लिए आप क्या उपाय करते
1: हम लोग उसको मतलब जो डब्बा उबा रहता है
0: हैं?
1: और
0: हाँ
1: चीज, जैसे दवाई छींट रहे हैं हम लोग, तो उसको हम लोग फेंकते नहीं हैं ज्यादा
0: हाँ
1: तरह से, हम
0: अच्छा
1: लोग एक जगह जमा करके ये कर देते हैं। ऐसी तो प्लास्टिक नहीं जलता है, दवाई रहता है वो हट जाता है।
0: बिल्कुल, यानी कि मिट्टी के अंदर जो है उसको दबा देना चाहिए ताकि कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। तो एक बात और जानना चाहेंगे कि जो महिला किसान है जो काम खेती बाड़ी नहीं करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे संदेश के रूप में कि
1: वो भी खेती बाड़ी करे और सबको करना चाहिए। देखिए अपना जो होता है वो कभी भी आप तोड़ के ला सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते
0: हाँ
1: हैं। मार्केट का मार्केट ही होता है, आप जाइएगा उतना दूर मार्केट जाइएगा, लाइएगा तब खाइएगा। अपना जो लगाइएगा वो अपने तरह से ला के खाइएगा। तो हम
0: हाँ
1: यही बोलेंगे सबको करना चाहिए,
0: हाँ
1: या जेंट्स हो या लेडीज, सबको खेती करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और काजल देवी जी, आप इतना बढ़िया जानकारी दिए हमारे कार्यक्रम में आए, हम आशा करेंगे कि जो महिला किसान हैं वो आपकी बात को सुनकर लाभ उठाएंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो ई हलथिन काजल देवी,
0: हाँ
2: जेकि प्रगतिशील महिला किसान हलथिन, जे बतेलथिन मकई के साथ साथ घंघरी, बरई और उरद के उन्नत न खेती कौन तरी करे के चाहिए, देखभाल के कौन तरी करे के चाहिए,
0: हाँ
2: और इनका से हम इन से बातचीत कर ले हलथिन उमेश रजक। तो भाई बेस जानकारी दिलथिन कि हम इनके खेती बाड़ी से जुड़ाव रखे के चाहिए और कैसे कम से कम आनंद लेते हुए खेती बाड़ी के काम से घर परिवार की भी देखो थीन और तरक्की भी करो थीन और प्रेरणा स्रोत भी बनलथिन अपन गाँव क्षेत्र के, है ना।
0: बिल्कुल, देखा कितना बेस बात बतेलथिन कि भाई हम इनके खेती बाड़ी मकई के साथ साथ जैसे तू बादाम के भी लाभ ले सको है, हर कई तरह के देखबा कि जे गाछ वृक्ष लगा रहल थी भाई, देखल कहलती नीम के गाछ, करौंज के गाछ, ये सब जो है हम इनके माटी के जो है उर्वरा शक्ति के बढ़ावो है, अब पैदावार भी बढ़ावो है, जेकर से देखबा कि कई तरह के रोग व्याधि जो है से न लगे।
2: तो देखा कि चलते चलते अब हम बताओ ये कि बाजार भाव है ना,
0: बिल्कुल
2: बाजार भाव जरूरी काहे पड़ो है किसान सबके, काहे कि हम बहुत मेहनत से खेती बाड़ी का काम करो हुई है,
0: हाँ
2: हमने
0: हाँ
2: के जो फसल है अपन खेत बाड़ी में लटकल रहो है, लगल रहो है,
0: बिल्कुल
2: अब अगर खेत से हम इनके पहुंचाना हो बाजार तक, अब हम इनके पहले अगर जानकारी ना रखवा कि हम इनके जे धान के फसल हो गलो, चाहे तो बरसाती फसल के खेती हो गलो, कि ओकर दाम कितना रखे के चाहिए, का मंडी में भाव चले थे, तो बेस दिन देख करके बेस भाव देख करके हम इनके जाए के चाहिए। ओकर वास्ते रोजाना कम से कम हम इनके बाजार भाव जाने के चाहिए हजारीबाग के, है ना। और
0: बिल्कुल
2: हजारीबाग के देखा कि हम इनसा किलो से ही बात करो ही, कि
0: हाँ
2: छोट
0: हाँ
2: किसान बड़ किसान शब्द ने से रहते ना, तो
0: बिल्कुल।
2: किसान सबके अपन अनुभव के और अपन जानकारी के हम इन साझा करो ही।
0: तो देखा कि आज के बाजार भाव रहले लाल आलू हो 20 से 25 रुपए प्रति किलो, सफेद आलू है 18 से 20 रुपए प्रति किलो, प्याज के बाजार भाव रहले हो 25 से 30 रुपए प्रति किलो, अब फूलगोभी है 30 से 40 रुपए प्रति किलो।
2: पत्ते गोभी रहले 20 से 25 रुपए प्रति किलो,
0: हाँ
2: पटल 30 से 35 रुपए प्रति किलो, रमतोराय 25 से 30 रुपए प्रति किलो, नेनुआ 25 से 30 रुपए प्रति किलो।
0: और देखा कि अगर हम नेनुआ के बाद जो है बात करिए कद्दू के, तो 30 से 35 रुपए प्रति किलो रहे हो। हरियर मरचा है 80 से 100 रुपए प्रति किलो। शिमला मरचा है 50

0: 50 से 60 रुपए प्रति किलो और गाजर है 35 से 40 रुपए प्रति किलो।
1: बीट देखला कि 40 से 50 रुपए प्रति किलो, बीन 60 से 75 रुपए प्रति किलो के हिसाब से देखा, और मुराई जे रहलो 30 से 35 रुपए प्रति किलो। हाँ। धनिया पत्ता जे रहलो 100 से 120 रुपए प्रति किलो,
0: और आदि के बाजार भाव रहले है 120 से 150 रुपए प्रति किलो। खीरा हो 25 से 30 रुपए प्रति किलो, बिलौती है 25 से 30 रुपए प्रति किलो, और लाल साग और पालकी साग हो 20 से 25 रुपए प्रति किलो।
1: इतना लो आज के बाजार भाव और अमीन के किसान सबके एक जानकारी ही मिलते रहे है।
0: हाँ हाँ।
1: साथ साथ कहा है कि भाई हम खेती बाड़ी के काम में पटवन के काम करो ही है और अपन फसल के देखभाल भी करो ही है, लेकिन ओकरे मौसम के असर हमेशा पड़ते रहे है। बरसात के समय हो, पानी कितना पड़े के चाहिए, पानी की निकासी कैसे रहे के चाहिए, तापमान का हो, ओकर जानकारी भी हमके बहुत ही जरूरी है किसान भाई।
0: आज और के
1: कम से कम आज के तापमान के बात करिए तो कम से कम आज के तापमान हले 24 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा आज के तापमान हले 30 डिग्री सेल्सियस।
0: और देखा कि आज के अगर आर्द्रता की बात करिए तो 77% यह तर जो है। कल के बात अगर हम इन करिए तो जो है कम से कम रहले है 23 डिग्री सेल्सियस और अधिक से अधिक हो 29 डिग्री सेल्सियस।
1: कल का तापमान रहते है ना, अनुमान लगावल गए है।
0: हाँ
1: कि
0: हाँ।
1: मौसम जो है कभी भी करवट ले सको है, बारिश कभी भी हो सको है, क्या की बरसात के समय में इना कह जा सको है भाई की कब पड़ तो पानी कम न, क्योंकि हमेशा जो है खेती किसानी में और पेड़ पौधा के जो भी हमें काम जो करते रहिए।
0: हाँ।
1: तो मौसम के अपन एक अलग मजा मिजाज रूप
0: है। प्रकाश भाई अब हम इन बात करो कि किसान भाई बहन के एगो लाभ खती ले भी देखबा कि उनका जो है एगो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और ये देखबा कि भारत सरकार द्वारा जो है चलावल गया है और एक जो पहल है एकर में का है कि हम इनके किसान भाई बहन जो है उनका जो है प्रत्येक साल देखबा कि 6000 रुपया जो है आर्थिक सहायता के रूप में देवल जाए, और ये राशि सीधे जो है से उनकर जो डीबीटी हुआ उकर माध्यम से जो है उनका एक सम्मान के रूप में जो है प्रत्येक किस्त में 2000 रुपया करके किसान भाई बहन के बैंक खाता में भेजल जाए
1: बेसकल। और ये पैसा के का उपयोग करिए भाई तो जानकारी रखे के चाहिए।
0: हाँ,
1: ताकि वह किसान के दिया जाए जो खेती बाड़ी से अपन जमीनी खतियानी से जुड़ल है उकर रसीद और खतियान जो ऑनलाइन पहले से करल गए है।
0: हाँ, हाँ।
1: कम से कम किसान क्रेडिट कार्ड जो लोग थी उनसे जुड़ा रो है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये पैसा के सीधे खाद बीज उपयोग करथिन, क्या देखा खरीफ के समय आ गलो है।
0: हाँ, हाँ।
1: और वैसे में धान के खेतिहर वालन काम करे शुरू करवा तो शुरुआती दौर में पैसा चाहिए ने, तो जोरन थोड़ा सा भी लगो है लेकिन दही तो जमिए जाए, तो यह वास्ते 2000 भी आ जाए ने।
0: हाँ,
1: किस्त में तीन किस्त में आओ है दो 2000 करके तो साल में हम इनके 6000 हो गलो।
0: और देखा प्रकाश भाई अभी जो है ने हम इनके जून महीना में जो है 2026 में 21वां किस्त जो है से जारी करल चुकल गए है, और हम इनके किसान भाई बहन जो है से भाई हर वर्ष 2000 रुपया करके ये जो है महीना में 4 महीना में 2000 रुपये जो है यानी साल भर में 6000 रुपये
1: देखा कि कम से कम जो हो कि 4 12 हो ना, तो कम से कम 4 महीना में 2000 डाल दो थी है ना।
0: बिल्कुल।
1: अगर कम से कम आगे पीछे समय हो है ऐसा ना कि ना, क्या कि समय भैया हर आदमी के लाभ पहुंचाए वास्ते कहीं ना कहीं समय लेवल जाए।
0: देखा भाई
1: लाभ हो है
0: एक लाभ भी जो है हम इन किसान भाई बहन के कैसे लेता थी देखवा, अगर तू जो है से योग्य किसान है और ई का है कि भाई अभी तक तू अगर आवेदन न कर ले तो अपन नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाके जो है तो सीधे जो है आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सको है।
1: तो भाई हमारा उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम सबके बहुत पसंद आए होते हैं, ऐसे ही नवा नवा जानकारी के साथ आगे भी बनल रहे, लेकिन अब धर्मी के जाके बेरा हो गए तो एक साथ हमारा अपन साथी प्रकाश के
0: और उमेश के अनुमति दा
1: जोहार।

किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, जो है आपका ही FM 102.1 MHz। किसान भाइयों का एक और कार्यक्रम स्टूडियो से लाइव प्रकाश कुमार राणा और उमेश रजक एक बार फिर से नवीनतम जानकारियां लेकर, कार्यक्रम आपका ही खेती बारी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: खेती बाड़ी सुने वाले सभी ग्रामीण भाई बहन के प्रकाश के दिन से जोहार और अपन कार्यक्रम में सबकन स्वागत हन। और वैसे में आज हमारे साथ उमेश भाई फिर से बने लथिन। और उमेश भाई तोहर जोहार, स्वागत हो अपन ही कार्यक्रम में।
2: जोहार प्रकाश भाई, और आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में फिर जो है हम सब ग्रामीण भाई बहन के एक बार स्वागत करो। और देखो हम आशा करो कि भाई खेती बाड़ी के साथ साथ जो है से अपन गीत नाथ भी सुनो थे। और देखा कि दिन भर जो काम कर लेते हो भी भाई, देखवा कि खेत क्यारी में बहुत काम हो। देखा कि धान के बिहन करे खो तो इन्हें मकई लगवे खो तो साग सब्जी लगवे खो। बड़ी किसान भाई बहन तो ना फूल गोभी लगे ले तो बिलौती मरचा सब गाछी कर ले तो धड़ाधड़ लगे थो। तो देखा कि अभी दर जो सांझ के गोड़ हाथ धो के जब बैठो थे किसान भाई बहन तो जो है हम इनके बेस बेस जानकारी के सुनो थे।
1: और वैसे में उमेश भाई कहल जा सको कि अब धर्म के रोपनी खोजबा या तो कोई खेतिहर मजदूर खोजबा तोरा मिले ना जाते तुरते, दो तीन दिन पहले तोहरा बोलो पड़तो कि भाई आज इनके खेत में काम है से कर दे वहाँ। अब बहुत मुश्किल से हम इनके मिल पा रहे है। वैसे में अब जो है वह मजदूरा के जगह में मशीन के जो है यंत्रीकरण बहुत ज्यादा हो गए। अब अगर देखा बड़ा बड़ा ट्रैक्टर पहले बड़ा बड़ा जो हम इनके बैल से जुताई करो लिए तो बहुत ही लगे लगे बहुत ही दिक्कत हो, लेकिन समय लगो ले मजदूरा भी लगो ले। अब छोट छोट जो है यांत्रिकरण हो गया है, मशीन आ गया है जेकर से हम इन का करो अब कि खेत की जुताई हो जाए है ना। अब बड़ी मनी जो काम है कटाई

0: कि देखवा कि पानी पटवे खातिर भी जो है सोलर प्लांट लग रहा लोग तो कहीं ना कहीं देखा किसान भाई बहन के बहुत तरह से जो है मदद करल जा रहा है ताकि जो है से वो कम पूंजी लगा के और बढ़िया से खेती बाड़ी कर सकती है, अधिक उत्पादन ले सकती है।
1: और भाई ऐसे भी कहा जा सको है कि कोनो भी काम करियो उमेश भाई जगह में कम लागत हो है ने ओकर मुनाफा बेस होबे करो है। अभी हम इन कोई भी काम करे सोचो ही है तो पहले ये जान लो ये कि भाई बीज में कितना दाम लगता है और हम इनके मजदूरा में कितना लगता है। हाँ, सेवा से तो अब एक से एक तरीका निकल गया है। देखा कि पहले पटवन में उन्हें पानी हो तो बहते बहते कितना पानी बह जितो कितना मजदूरा लगी तो सेवा से सरकार देने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कुसुम योजना चले थे है ना। साथ ही साथ ये भी देख ला कि अब जो है मल्चिंग विधि से खेती हुई तो कहीं न कहीं यंत्र जो हो हर जगह आ गए है। घरों में बहुत सारा काम हो तो हर जगह मशीन के मतलब लागत होए थे दिन प्रतिदिन में जिधर से खेती में बहुत सुविधा है ऐसा बात ना है लेकिन हाँ ओकर रख रखाव भी समय से करथिन और मतलब अपन अनुभव लेथिन। वैसे में अब अपन श्रोता भाई बहन के एगो गीत सुना हुई है, गीत के बाद हम जानकारी लेब भाई की जे युवा बेरोजगार हथिन वो कैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के जोरे कैसे ऋण लेकर के अपन व्यवसाय के चालू कर सको थीन ओकर बारे में जानकारी हन लेकिन अब धर एगो गीत सुनिए।

0: तो देखा प्रकाश भाई, अब हमें जानकारी के देने चलो यार, देखा कि जो है तोहरा अगर खेती बाड़ी करे हो तो कई तरह के देखवा के हुनर है, तोहरा जो तोहर मन हो रुचि हो ओकरे हिसाब से हम इनके रोजगार करे के चाहिए। एकरे में देखवा के हम इनके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है जो जिला उद्योग के द्वारा जो है से एकर में कई तरह के किसान भाई बहन के उनका मदद पहुंचावल जाए।
1: और देखा कि हर जिला में जिला उद्योग केंद्र रहू है, हाँ। वैसे में देखा कि हर किसान के और हर मजदूरा के और हर श्रमिक भाई के उम्मीद रहू है कि भाई घर में कुछ अगर हमें पास रुपया पैसा ना हो, हाँ। तो ऑनलाइन के जोरे भी हम इन आवेदन दे सको ही अपन जिला उद्योग केंद्र में, वहाँ पर जो श्रमिक मित्र रहो थी तो उनका सहयोग करो थी,
0: हाँ।
1: और भाई तोरा जे भी सत्तू मिल करना हो या तो भी देखला कि कोई को वृक्ष से काम करना हो या तो कुछ भी ऐसा कोई काम रह लो जैसे तू रोजगार कर सको है, तो एक राष्ट्रीय कृत बैंक जोड़े तोरा लोन दिया जाओ,
0: हाँ।
1: और मतलब कोटिवार जातिवार अलग अलग हुए है,
0: बिल्कुल
1: केकरो कम है केकरो ज्यादा है, शहरी ग्रामीण के अलग है, दोनों की अलग अलग तरीका से मतलब सहूलियत के हिसाब से
0: भाई। देखा कार्यक्रम में जो हम इन जानकारी उनका दो ही है कि कौन हिसाब से जो है शहरी हो चाहे ग्रामीण है, तो उनका जो है से पूरा जानकारी देवल जाए ताकि तू एक समय पर लाभ ले सका। तो एकरे में जो है आज जो जानकारी दे रहे थे वो थी देवेंद्र कुमार और उनकर से बातचीत कर लेते प्रकाश कुमार राणा।
1: तो सुनो ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो जिला उद्योग हजारीबाग के जानकारी है ना, वैसे में हर जिला में जानकारी रहो है लेकिन उम्मीद है हमारा की जानकारी सुन के जरूर पहल कर थी।
0: बिल्कुल
2: श्रोताओं, जिला उद्योग केंद्र हजारीबाग में जो योजनाएं चलती हैं, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है, इससे क्या फायदे हो सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं।
3: मेरा नाम देवेंद्र कुमार गोस्वामी है, जिला उद्योग केंद्र से हैं। इसमें पीएमईजीपी से रिलेटेड बहुत सारे है सो योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल फॉर ब्रेड पापड़ का निर्माण, रेडीमेड गारमेंट है, अगरबत्ती निर्माण, ये सब में बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो जिला उद्योग केंद्र के थ्रू मिलती है, लेकिन इसमें सब्सिडी वगैरह है, छूट है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग है सब्सिडी, उसमें है सो 35% सब्सिडी मिलती है और शहरी क्षेत्र के लिए 25% मिलेगी। उसके लिए कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है सो बेनिफिट ले सकते हैं, 5-6 डॉक्यूमेंट लगता है मैंडेटरी, जैसे में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मुखिया प्रमाणित, जिसका ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके लिए मुखिया प्रमाणित लगेगा, और एडुकेशन सर्टिफिकेट लगता है, जैसे में आप 5 लाख के ऊपर लेते हैं तब एडुकेशन लग सकता है, अगर 5 लाख के नीचे रहेगा तो एडुकेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और इसके लिए कोई भी योजना आप यूज करिएगा तो उसमें है सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है सो बनाना अनिवार्य है, कोई भी आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसका एक एस्टिमेट बनता है, उसी को कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जितना भी है सो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उसमें सारा मेंशन रहेगा, और साथ ही इसमें योजना का लाभ आप है सो बहुत बहुत प्रकार का उठा सकते हैं।
2: लोगों का रुझान अलग अलग होता है ना, कोई सेवा क्षेत्र में जाते हैं, कोई विनिर्माण के क्षेत्र में जाते हैं, तो उनका किस तरह से चयन किया जाता है, वे पहल कैसे करते हैं, कैसे जुड़ेंगे आपसे या आवेदन कैसे भरेंगे, उसके बारे बताइए।
3: ये आवेदन है सो ऑनलाइन के प्रक्रिया से भी जुड़ सकते हैं, इसके लिए वेबसाइट है पीएमईजीपी गवर्नमेंट वाला, उसमें आप जाके है सो वेबसाइट विजिट करके फॉर्म भर सकते हैं।
2: अगर जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है बेरोजगार पुरुष महिला उद्यमी इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ऋण ले सकते हैं, और कम से कम न्यूनतम आहर्ता जो होगी 8वीं पास होनी चाहिए है ना,
3: सामान्य कोटा के लिए और कोई भी कास्ट के लिए, लेकिन यह हजारीबाग है सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे आता है, इसके लिए 35% आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और शहरी क्षेत्र के लिए 25% है सो सब्सिडी मिलता है।
2: आवेदक के लिए पात्रता की बात करते हैं तो वे आवेदक जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए,
3: हाँ हाँ मैंडेटरी है कि 18 साल से ऊपर ही होनी चाहिए, उससे नीचे होगा तो वो नाबालिग कहलाएंगे,
2: और 8वां पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होनी चाहिए।
3: 8वां पास है सो जिनके लिए चाहिए, जो बड़ा अमाउंट के तौर पे लेना चाहते हैं 5 लाख से ऊपर, उसके लिए 8वां पास का ये सर्टिफिकेट लगता है, और इसके लिए डॉक्यूमेंट में ये आवेदन कम से कम है सो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कम से कम न्यूनतम 8वां पास होना चाहिए, एक फोटो लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जाति सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एडुकेशन सर्टिफिकेट, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आते हैं तो उसके लिए मुखिया द्वारा प्रमाणित पेपर लगता है।
2: योजना अंतर्गत लाभप्रद जो इकाइयों की सूची की बात करते हैं तो क्या क्या ऐसे कार्य हम कर सकते हैं, कुछ कार्यों का नाम बताइए।
3: एनीथिंग जैसे में आप ऐसे किसी प्रकार का मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जैसे में हो गया ब्रेड बिस्किट का निर्माण, पापड़ निर्माण, ये सब हुआ मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में होता है किसी प्रकार का मरम्मती का कार्य हो वो होता है सर्विस से, और ट्रेडिंग से रिलेटेड है सो जिला उद्योग केंद्र से नहीं मिलता है, ये दूसरा विभाग में चला जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस से रिलेटेड ही मिलता है इसमें।
2: तो हर जिले में उद्योग विभाग होता है, यदि कोई आवेदक जो है आवेदन देना चाहते हैं तो नजदीकी जो हमारे उद्योग केंद्र है वहाँ से संपर्क करें, ऑनलाइन आवेदन भरें ताकि उनका जो सपना है इससे साकार हो सके, है ना। तो आप हमारे कार्यक्रम में अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद।
1: तो अब तक जो जानकारी सुनी थी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के कार्यक्रम के बारे में, देखा कि छोट जानकारी ले, लेकिन का है कि बहुत बड़ा बड़ा बात सुनल मिलने हमके कि कैसे कौन तरी हमके पहल करे के चाहिए। और देवेंद्र कुमार जी बतेलथिन अपन अनुभव के जो श्रमिक मित्र के जो वहां पर काम करोलथिन है ना, और सभी साथी काम करोलथिन जो बतेलथिन कि भाई वहां पर ऐसी भी देखा कि झारक्राफ्ट के जोरे यहां पर जो हो जो हमी के झील परिसर हजारीबाग के पास एक स्टॉल लगल है, और स्टॉल में क्या है भाई कि तरह तरह के जो हस्तशिल्प कला हुआ ने ओकर जानकारी मतलब वहां पर रखल गेले है।
0: बिल्कुल सही बात कहले
1: बा, अपन तजुर्बा वहां बते थी
0: कि देखा हाथ से बनावल जो है से जे सामान बनवो थी, जैसे बैग हो गलो, तो मिक्सचर हो गलो, अगरबत्ती हो गलो, कहीं ना कहीं देखा कि हम इनके किसान भाई बहन के जो है अपन खेती बाड़ी के साथ साथ जो है से अपन हुनर के भी उजागर करे के चाहिए। तोहर में का हुनर है, का जो है गुण है, जैसे तोहरा बकरी पालन करे के मन हो, चाहे मुर्गी पालन करे के मन हो, तो देखा कि हम इनके जो सरकार के तरफ से कई तरह के ऐसा विभाग है योजना चलावल जा रहा है, चाहे मछली पालन हो तो मत्स्य पालन जो है जिला मत्स्य पालन से संपर्क करा, तोरा जो सारा जो है रोजगार करे ले लाभ मिलो है, सुविधा मुहैया करावल जा है, जैसे मुर्गी पालन करना हो, पशुपालन करना हो तो पशुपालन विभाग जो है से हर जिला में खोलल गेल है भाई, तो वहां से संपर्क करा, कहीं ना कहीं देखा हम इनके बस आगे आवे के जरूरी है, और समय समय पर प्रशिक्षण भी देवल जाए।
1: हाँ बेस कला, और ये भी कहल चाहे भाई कि जहाँ कहीं प्रदर्शनी लगो है ने तो कम से कम लोगों के जाए चाहिए वहां पर कि जाए से का उत्साह बढ़ो है ना, और उत्साह देखा कि कैसन बढ़ो है कि कोई भी काम जितना तरह के चाहे तो जान ला कि माटी से जुड़ल काम हो या पीतल से जुड़ल, आजकल जो पुराना पारंपरिक जो हुआ है बांस के जो टोकरी बनो है ना, फूल के जो माला बनो है, साथ ही साथ देखा कि शिल्पोत्सव मनाल जाए, जैसे शिल्पोत्सव का मतलब हो गया कि हाथ से बनल जितना भी काम हुआ है सबके वहां प्रदर्शनी कर जाए ताकि सबके रुझान बढ़े, अपन जो नजदीकी जो हम के चारों दिन से जो

0: सामान मिलो ओकर सामान के ही उपयोग करके आगे बढ़े के कोशिश करो, ये है ना।
1: एक बात और है, देखा भाई देखा जे हम के जे किसान भाई बहन थीन जे अपन हाथ से बना के ले जाते हैं, जैसे मूर्ति बनावो थे भाई पितर कासा के, और बात देखबा कि कपड़ा में फूल बनवो थे, साड़ी बनवो थी, सोहराय के पर जो है कई तरह के ऐसा चित्र बनवो थे, जेकरा जो है हम इनके किसान भाई बहन जाते हैं मेला में, रोजगार मेला जेकरा कहल जा है, और ओकर में कहा है कि बेस बेस सामान के भी खरीद सको।
0: तो भाई देखा कि सोहराय और कोहबर कला भी हमें के बहुत बड़ा एक मायने रखो अपन संस्कृति सभ्यता के।
1: हाँ।
0: तो जरूर जेथिन काल भर रहते हमें के हजारीबाग के झील परिसर के बगल में ही है ना, तो वहां पर कहा है कि काल भर वहां पर लगल रहते मेला, तो कम से कम जेथिन और जाकर देखथिन कि भाई कि कौन तरी मेहनत करू थीन जेकर से आदमी आगे बढ़ पा रहा हो, उत्साह बढ़े के चाहिए, इससे वास्ते जरूर जेथिन कम से कम अपन अनुभव के भी अपन दोस्त सबके साझा करते हैं बताते हैं।
1: एक बात और कह जाबू ना प्रकाश भाई, देखा कि हम इनके किसान भाई बहन खेती बाड़ी करो थी भाई, बहुत किसान भाई बहन की गाय पाल लेते हूँ, बैल रख लेते हूँ, हम इनके बहुत किसान भाई बहन तो ना कि बकरी पालन कर लेते भाई, अरे देखवा ने कि गरीब के एटीएम कहल जाए और कम लागत में जो है बहुत अधिक एक मुनाफा हुआ है, बस जरूरत हो एक जो है से पाले के शुरू करे के, और बहुत बढ़िया बढ़िया नस्ल मिलो है जेकर से जे हम इनके झारखंड के जे यहाँ के जो आबो हवा है वहाँ उनका जो है से सेट कर जाए।
0: बेस कह लो, और चलते चलते हम यही बता दिए उमेश भाई कि कम से कम अपन जे नजदीकी जे सभ्यता हो भाषा हो ओकर कम से कम बातचीत करे के चाहिए। अब धर के हर घर में हमी के जो खोठा के जे संस्कृति हो सभ्यता हो खोठा में जे अपनापन हो वो देखे मिलो है। अगर तू जाके अगर तू हिंदी में ही बात करो घर में तो कहीं के दूरी का एहसास हो है, वो मन से लगाव ना हो पा रहे। हम ना कहिए भाई कि तू हर जगह करे, लेकिन कम से कम अपन जे खोठा भाषा अपन नजदीकी भाषा ओकर से बात करे में जे आनंद होने से बहुत ही बड़ा आनंद मिलो। अपन बाल बच्चा से अपन माए बाप से बात में जे बेझिझक जे बात बोल दो ही ने वो सोचे समझे ना पड़ो है यार, हिंदी भाषा को उपयोग करो ही है तो भाई तू तो हमें चारों दिन से अपन सारा काम हो जाए। लेकिन कहा है कि हमें घर में जैसे पूछ रही है अपन लोकल नजदीकी में बात करिए तो बहुत ही आनंद आओ अपन खोटा भाषा बोल कर।
1: बिल्कुल सही बात कहला भाई, देखा हमीन के जो अपन भाषा हो क्षेत्रीय भाषा है जरा हम मदर लैंग्वेज कह सको ये, तो कहीं ना कहीं देखा कि अपनापन है ओकर में, और जे तू अपन भाषा बोल रहा है तो अपन भाषा बोले में सुने में जे ओकर में मिठास है वो अलग तरह से हुआ। ऐसे भी कहल गया है ने कि तीन कोस में जे है से भाषा में बदलाव हुआ।
0: हाँ।
1: तो जैसे तू तीन कोस पार कर ला दूसर भाषा आलो, फिर आगे गेला तो दूसर भाषा, कहीं ना कहीं देखबा कि जे है भाषा में बदलाव हुआ है।
0: और सबसे बड़ा ये बात ये भी कह चाहो कि अभी हम जे हजारीबाग के झील परिसर में जे वहां पर जे लगल हो शिल्पोत्सव लगल हो है ना इस साल में, और देखा कि तरह तरह के जे महिला पुरुष अपन अपन हाथ के बनावल चीज के लेके वहां प्रदर्शनी कर लेथिन है ना।
1: हाँ हा।
0: तो ओकर से कहा है कि कम से कम हमें के जाए के चाहिए वहां देखे के चाहिए, और देखा कि कम से कम तो आज भी हले कल हो भर चलते मान ले।
1: हाँ।
0: तो कल हमें के जाए के चाहिए और कम से कम कुछ खरीदारी कर लेके चाहिए जगह से उनका भी उत्साह बढ़ते, और हमेशा देख देख के जाए से या तो ना नजरअंदाज करे से का हुआ है कि अगला रुझान भी कम हो जाए। तो सबके विज्ञापन जरूरी है, बताना जरूरी है, कैसे कम से कम घूरे के बहाने भी जा सको है कि भाई हम के कौन तरी खेती बाड़ी हुआ है या तो खेती बाड़ी से का सामान बन सको।
1: खेती बाड़ी की जो है तो बात कहला तो बहुत किसान भाई बहन थी की भाई देखा जब अपन खेती बाड़ी करो थी वो साग सब्जी के भी ले जाते प्रदर्शनी करे ले, ताकि जो है सबसे बढ़िया जो खेती हो जिनका सब्जी हो चाहे कद्दू हो चाहे मरचा हो तो उनका जो है से पुरस्कृत भी करल जाए समय पर। और कहे कि भाई देखा जब जिला के पदाधिकारी रहोथिन भाई देखवा कि कृषि पदाधिकारी रहोथिन, पशुपालन के पदाधिकारी रहोथिन, मछली पालन के पदाधिकारी रहोथिन, तो कहीं ना कहीं देखा कि हर विभाग के किसान हम इनके जो है पहुंचो थी अपन अपन जो है से जो रोजगार करो थी ओकरा लेके, अरे जब प्रदर्शनी में जो है से उनका जब पुरस्कार मिल जाए तो उनका भी मन गदगद हो जाए कि देखा कि हम बेस तरीके से खेती कर लिए या बेस तरीके से पशुपालन कर लिए तो ओकर में जो है ओकर हकदार हम ही है। तो इसीलिए देखा कि जिला में प्रदर्शनी लगावल जाए ताकि गांव के जो किसान हथिन जे गांव के जे रोजगार कर लेथिन उनका जो है एगो हौसला बढ़ जा सके।
0: और वहां जाके बाद ये भी समझ में आओ कि भाई जूट के जितना भी इनके बैग थैला हो गलो है ना, और कम से कम इतना हो कि साड़ी वगैरह भी यहाँ बेस पेस मिलो सॉल मिलो है ना, और गर्मी के समय में जो उनके जितना भी सामान हो है ना वहां सब देखे मिल ले, और एक तरह का कहल जा सके कि हर तरह से हम इनके फायदा हो है जेकर से हमी के वहाँ पहुंचे के चाहिए जानकारी रखे चाहिए। तो बता दिए हम के जो कार्यक्रम खेती बाड़ी है रोजाना जो है सोमवार से लेकर शनिवार तक ठीक 5:32 से शुरू हुआ है जेकर से कहा है कि खेती बाड़ी का कार्यक्रम रोजाना चलू है तो सुनते रहती और दूसर के भी बतेथिन कि हमी के जो कार्यक्रम जो हम अपन खोटा भाषा में अपन आओ है अपन मन के अनुभव लेकर के आओ अपन मन के बात लेकर के आओ ये तो अपन इतना मेहनत करके हम गाँव गाँव जाकर के हम वहां से बातचीत करो है ताकि तुहिन तक वहां पहुंच सको है तो कम से कम तोहरा इतना हो कि 2-4 आदमी के चौपाल चर्चा में जिक्र करती कि भाई किसान वाणी के साथ साथ खेती बाड़ी भी है ऐसा कार्यक्रम है जो हमने के खेत बाड़ी अपन संस्कृति सभ्यता से जोड़ो है और हमें आगे विकास करो तक साथ ही अब हमारा उम्मीद है कि अब खेती बाड़ी से जाए के बेरा भी हो गए है
1: तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमारा उमेश के
0: हमारा प्रकाश के
1: अनुमति द जोहार।

आप सभी सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती बारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका ही FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर भारतीयों द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लेना एक दंडनीय अपराध है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 में झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 6 जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। हजारीबाग में आयोजित 2 दिवसीय उड़ान लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में देश भर की महिला उद्यमियों ने शिरकत की। केंद्र सरकार की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर महिलाएं न केवल खुद का व्यवसाय चला रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। गुमला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रांची टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के क्लर्क रंजित कुजूर और सेवानिवृत्त शिक्षक वत्स रविकांत को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीएसपी के नेतृत्व में आई टीम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रांची ले गई है। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में हजारीबाग पुलिस के एक जवान की मौत हो गई जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। चलकुशा थाने की पुलिस टीम मैथन में छापेमारी कर सरकारी वाहन से वापस लौट रही थी तभी NH-19 पर गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। पलामू के चैनपुर में आज प्रमंडल स्तरीय 65वीं सुबर्तो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। शाम का समय और युवाओं को इंतजार अपने कार्यक्रम युववाणी का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार, शुभ संध्या युवा साथियों। आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से आपका प्रिय कार्यक्रम युववाणी शुरू हो चुका है। आज इस कार्यक्रम का होस्ट और आप सबका दोस्त मैं हूं हाजिर, माणिक चक्रवर्ती। सबको नमस्कार जोहार कहता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जल केवल प्रकृति का उपहार नहीं है साथियों, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। यदि जल है तो कल है, यदि जल सुरक्षित है तो भविष्य भी सुरक्षित है। इसी सोच को साकार करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, जल संरक्षण में जन भागीदारी। और इसमें युवाओं की भागीदारी तो सबसे महत्वपूर्ण और अहम हो जाती है। तो प्रिय साथियों, आज पूरी दुनिया जल संकट की चुनौती का सामना कर रही है। कहीं भूजल तेजी से घट रहा है, कहीं नदियां सिकुड़ रही हैं, तो कहीं वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ चला जाता है। भारत में हर वर्ष मानसून भरपूर वर्षा लेकर आता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा बिना उपयोग के नदियों और समुद्र में चला जाता है। यदि हम वर्षा की हर बूंद को सहेज लें तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, वो जल संकट का सामना नहीं करेंगी या बहुत कम करेंगी। इसी उद्देश्य से कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। इनका संदेश बहुत सरल है, जहां बारिश की बूंद गिरे वहां वहीं उसे रोकें और संजोएं। यही अभियान जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की प्रेरणा देता है। अब मैंने बात की थी कि जन भागीता तो होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भागीता जो है वो है युवाओं की भूमिका। साथियों, भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा हैं, आप हैं। यदि युवा संकल्प ले लें तो कोई भी अभियान सफल हो ही जाता है। आप अपने विद्यालय, महाविद्यालय, गांव और मोहल्ले में जल संरक्षण की शुरुआत कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक कीजिए। वर्षा का भी समय चल रहा है, अब तो वर्षा शुरू हो चुकी है, मानसून आ भी गया है। घरों में पानी की बर्बादी को रोकिएगा, नलों को खुला ना छोड़िएगा, पेड़ लगाइएगा और उनकी देखभाल कीजिएगा, क्योंकि वर्षा के मौसम में पेड़ बहुत जल्दी जल्दी अपना आकार बदलते हैं। तालाबों, कुओं और जल स्रोतों की स्वच्छता रखने के लिए उसमें भाग लें, लोगों को उसमें प्रेरित करें। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश लगातार फैलाते रहें। साथियों, याद रखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है और छोटे छोटे प्रयास बड़े बड़े परिवर्तन लाते ही हैं। अब युवाओं के साथ साथ जन भागीदारी क्यों आवश्यक है ये भी जान लें। सरकार योजनाएं बना सकती है साथियों, लेकिन उन्हें सफल बनाती है जनता की भागीदारी। जी हां, जनता की भागीदारी, आपकी भागीदारी, यानी युवाओं की भागीदारी। तो साथियों, जब पूरा समाज मिलकर जल संरक्षण करेगा तभी जल संकट का स्थायी समाधान संभव होगा, है ना? ऐसे में यदि हर परिवार वर्षा जल संग्रहण करने लगे, यदि हर गांव अपने तालाबों को जीवित रखे और हर शहर जल का विवेकपूर्ण उपयोग करे ना, तो देश जल समृद्ध बन सकता है। अभी बरसात का मौसम है, इसलिए हमने ये विषय आप सबके लिए चुना है कि जल शक्ति अभियान जो सरकार की तरफ से चल भी रहा है, कैच द रेन, जल संरक्षण में जन भागीदारी। अब झारखंड की बात कर ले युवा साथियों, झारखंड और हजारीबाग के संदर्भ में बताना यह चाहूंगा कि हमारा झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, सभी जानते हैं। हजारीबाग की धरती हरियाली और जल स्रोतों के लिए जानी जाती है। यदि हम वर्षा जल का संरक्षण करें, तालाबों का संरक्षण करें और अधिक से अधिक पौधारोपण करें, तो आने वाले वर्षों में जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और प्रिय साथियों, आज संकल्प लेने का समय है। मैं जल की एक एक बूंद का सम्मान करूंगा, मैं जल की बर्बादी नहीं होने दूंगा, मैं वर्षा जल संचयन का समर्थन करूंगा, मैं कम से कम 5 लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित जरूर करूंगा और मैं पर्यावरण और जल स्रोतों की रक्षा में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा। दोस्तों, जल बचाना केवल पर्यावरण की जिम्मेदारी नहीं है,
बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी संवेदनशीलता और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है, है ना। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले लें इसी कार्यक्रम के तहत कि हर बूंद बचाएंगे भविष्य सजाएंगे। जी हां, हर बूंद बचाएंगे भविष्य सजाएंगे, जल का मान बढ़ाएंगे, भारत को जल संपन्न बनाएंगे। इसी प्रेरक संदेश के साथ साथ अब युवाणी में आगे बढ़ने का समय, और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब शाम के समय में आपको एक गीत सुनवाएंगे, आप गीत को गुनगुनाएंगे, सारे स्ट्रेस खत्म, अभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो लीजिए ये गीत सुनिए सबसे पहले।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: और युवा श्रोताओं, गीत भी हुआ, कुछ विज्ञापन भी चले, लेकिन अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाते ही मैं देख रहा हूं कि एक भेंट वार्ता है जो आपको सुनाना ही है, और वो भेंट वार्ता उसका विषय जो है वो है व्यवसायिक पाठ्यक्रम में युवाओं का भविष्य। तो आइए इस विषय पर भेंट वार्ता सुनते हैं। भेंट वार्ताकार है सौरभ कुमार और भेंटकर्ता अशोक कुमार।
6: श्रोताओं, आज के युवाणी कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं हजारीबाग के कवि महिला महाविद्यालय बैचलर इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप विभाग के इंचार्ज असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कुमार। आइए जानते हैं वर्तमान समय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, और आज व्यावसायिक पाठ्यक्रम में बैचलर इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप की पढ़ाई छात्राओं को किस तरह लाभ पहुँचा रही। तो सौरभ जी, आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही साथ नमस्कार।
7: धन्यवाद अशोक जी। पहले तो पाठ्यक्रम जो प्रोफेशनल पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर वोकेशनल कोर्स, यहाँ पर केबी महाविद्यालय में 5 वोकेशनल कोर्स चलते हैं
6: जी,
7: ठीक है। फैशन डिजाइनिंग, CND, BMLT, BCA और BCS
6: जी।
7: तो BCS बैचलर इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप यहाँ 2020 से शुरू हुआ
6: जी। खास तौर से BCS पर ही आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे
7: जी।
6: जी, आगे बताइए।
7: तो बैचलर इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप जो है
6: जी,
7: वो CA और CS के अंडर में जो लोग काम करते हैं, उनके ऑफिस में जो काम करते हैं या लॉ फर्म्स में जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक एक पाठ्यक्रम है। ये पूरी तरह से उनके व्यवसाय से संबंधित चीजों में इसमें थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल भी पढ़ाई होती है, और समर ट्रेनिंग जो है वो भी, इंटर्नशिप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी किसी CA या CS के अंडर में ये लोग 45 डेज का काम करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से जो है ऑडिटिंग होती है और लॉ फर्म्स में किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग बोलते हैं
6: जी। सौरभ सर, अभी के समय में वोकेशनल कोर्सेज के काफ़ी महत्व भी देखे गए हैं हर सेक्टर में, कही तो इसकी जैसे उपयोगिता है, महत्ता है। तो ये बता दिया कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ वोकेशनल कोर्सेज करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है?
7: वोकेशनल कोर्स करने का सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट ये है कि जैसे वो आपको एक मेन सेक्टर के लिए तैयार करता है
6: जी,
7: ठीक है। जैसे फैशन डिजाइनिंग हो तो वो गारमेंट्स के लिए जो है उसके लिए तैयार करता है, BCA हो गया वो IT इंडस्ट्री के लिए आपको तैयार करता है, उसी तरह से BCS है तो वो आपको ऑडिटिंग जो है कंपनी की, विभिन्न तरह की ऑडिटिंग होती है, ग्रीन ऑडिट जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल ऑडिट, पर्यावरण संबंधित ऑडिट जो होता है उसके लिए होता है, अकाउंट

0: संबंधित एनवायरमेंटल लॉज पढ़ाते हैं, जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, जैसे आप जानते होंगे कि झारखंड में बहुत सारा कोल माइन हो गया, ठीक है
1: जी,
0: तो बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, तो हम लोग उससे संबंधित जो गवर्नमेंट के जो मानक हैं उनको कैसे आप फॉलो अप कर सकते हैं, उसके लिए एनवायरमेंटल ऑडिट होता है जिसमें, और फिर उसके बाद लीगल ड्राफ्टिंग, अगर कंपनी को रजिस्टर करना है, कंपनी के किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो उसके लिए जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है उसके बारे में सिखाते हैं।
1: अच्छा, BCS का कोर्स यहाँ कही जाता है, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो
0: नॉर्थ
1: जी गौरव की बात है कि वुमेन्स के भी वुमेन्स कॉलेज
0: जी
1: इसके सुविधा उपलब्ध है
0: जी।
1: ये कितना वक्त हो गया?
0: हम लोगों ने पहला बैच 2017 में स्टार्ट किया।
1: 2017 में आपने स्टार्ट किया
0: जी,
1: और कुछ उपलब्धि भी रही है कि उससे?
0: हाँ, अभी हमारी उपलब्धि, जैसे अभी हमारा जो पहला बैच जो अभी निकला है उसमें से 10 जो बच्चे हैं वो प्लेस्ड आउट हैं। एक्चुअली हम लोग ले, जैसे इसमें लिमिटेड सीट्स हैं जिसको हम लोग 25 सीट्स ही लेते हैं।
1: अच्छा जी
0: जी, तो 10 बच्चे जो हैं वो प्लेस्ड आउट हुए हैं यहाँ से, जिसमें से जो सबसे हाईएस्ट पैकेज हमारा जो गया है वो 8 लाख पर एनम का गया है बैंगलोर में बायजूस में।
1: अच्छा, BCS को कोर्स कराने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है भारत में, पूरे भारत देश की बात?
0: भारत में अगर बात करेंगे तो साउथ में ज्यादातर है,
1: ज्यादातर
0: साउथ, जैसे आपका SRM यूनिवर्सिटी है वो साउथ में है, उसके बाद लॉयला कॉलेज है वो है क्राइस्ट में, इसकी पढ़ाई होती है, ठीक है, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, उसमें इसकी पढ़ाई।
1: तो BCS के अलावा और यहाँ कॉलेज में कभी वुमेन्स कॉलेज की बात करें तो और कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेज कराए जा रहे हैं?
0: शुरू में ही बताया कि इसमें हमारे यहाँ लगभग हर तरह का वोकेशनल कोर्स कराया जाता है। इसकी इसका रीज़न ये है कि जैसे बच्चियाँ जो हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि ये महिला विद्यालय है तो वुमेन संबंधित जो कोर्सेज हों उनको कराना ज़्यादा बेटर है
1: जी जी।
0: जैसे कि जैसे आप यहाँ पर भी देखिएगा तो BCS पढ़ाई होती है, BBA पढ़ाई नहीं होती। रीज़न ये है कि BBA में बच्चे क्या होते हैं वो फील्ड वर्क करते हैं, यहाँ तो BCS में है कि आपको ऑफिस जॉब करना है, तो उस वजह से। फिर फैशन डिजाइनिंग भी ऐसा ही सब्जेक्ट है जहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है
1: जी।
0: फिर उसके बाद CND आ जाता है, क्लिनिकल नाइट्रिशन एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, ठीक है, उसमें भी है कि आपको हॉस्पिटल्स में काम करना है। तो जितने विषय जो वुमेन से संबंधित हैं वो सारे ही हम यहाँ पर वोकेशनल के तौर पर।
1: क्या सारे वोकेशनल कोर्सेज में प्लेसमेंट की भी व्यवस्था है
0: जी? हमारा एक पार्टनरशिप, दो चीजें हैं
1: जी।
0: पहला तो हमारा अपना एक प्लेसमेंट काउंसिल सेल है,
1: ठीक है,
0: उसके मैं और एक और BCA के जो इंचार्ज हैं वो दोनों मेंबर हैं, ठीक है, और एक हमने एक बाहर की कंपनी है HR में, उससे हम लोगों ने टाई अप करके रखा हुआ है, वो आती है यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए,
1: यानी कि प्लेसमेंट की व्यवस्था यहाँ पर छात्राओं को है और निस्संदेह रूप से लाभ मिला होगा। वर्तमान में शिक्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए छात्र छात्राओं के लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: वर्तमान में जैसा हम लोग अभी भी देख रहे हैं जो नई शिक्षा नीति है
1: जी,
0: वो ज्यादातर
1: ऑनलाइन पे अभी निर्भर है,
0: ऑनलाइन पर निर्भर तो है, वो तो कोरोना के कारण है, ठीक है, बट ज्यादातर जो अभी जो शिक्षा नीति है उसका फोकस भी जो है वो प्रोफेशनल कोर्स की ओर ज्यादा है
1: जी,
0: व्यावसायिक कार्यक्रम की ओर ज्यादा है, क्योंकि रोजगार संबंधी जो पाठ्यक्रम है उसको, उस पर जोर ज्यादा दिया जा रहा है ताकि ज्यादा लोग जो है वो काम कर सके और ज्यादा लोग जो है वो कार्यरत हो सके।
1: और भी कुछ संदेश देना चाहेंगे जो इस कोर्स में आना चाहिए? अच्छा, ये बताया जाए सौरभ सर की ये BCS का कोर्स जो है कुल कितने वर्षों का होता है?
0: ये 3 वर्ष का होता है, उसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, तो मास्टर्स अलग से साउथ में बहुत जरूरत होता है।
1: 3 वर्ष के कोर्स में आपके केंद्र से अगर कोई करता है कुल कितनी रकम खर्च होती है इसमें?
0: इसमें कुल 75,000 रुपीज टोटल फी
1: 3 वर्ष
0: जी,
1: तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि स्थान लोकल में इस तरह की सुविधा दी जा रही है तो छात्र जो है जितने भी छात्राएं हैं इस कोर्स के करके अपने भविष्य को उज्जवल कर सकती है। जैसा कि आपने कहा कि 10+2 के

0: बात ही जो है सो हाँ करियर सुविधा जो है सो शुरुआत इसकी हो जाती है। ये बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि है हजारीबाग के लिए कि वुमेंस कॉलेज में। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि ये बीसीएस का कोर्स है, क्या प्राथमिकता आप लोग देते हैं कि जो इस कॉलेज के की बच्चियां हैं उसी को आप लोग लेते
1: हैं? नहीं ऐसा
0: हजारीबाग के बाहर के भी इसमें आ सकते हैं या दूसरे कॉलेजेस के भी
1: हम लोग
0: बच्चियाँ इसमें आ सकती हैं, ये बताइए।
1: मैं आपको एक अपना अनुभव है वो बताना चाहूँगा। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस कोर्स को, प्रारंभ किया था, तो जो हमने ज़्यादातर देखा कि जो ट्रेडिशनल पढ़ने वाले यहाँ के जो बच्चे हैं ठीक है वो कम आए, उसकी जगह पर जो सेंट जेवियर्स के बच्चे हैं, डीएवी के बच्चे हैं वो ज़्यादा
0: जी
1: ठीक है।
0: अच्छा,
1: तो उनको देखते हुए फिर धीरे धीरे करके आज की डेट में हमारे पास यहाँ के बच्चे ज्यादा हैं और हमारे पास मुश्किल हो जाता है कि बाहर के बच्चों को हम ले पाएंगे।
0: लेकिन ये सुविधा है कि अगर कैपेबिलिटी है तो
1: कैपेबिलिटी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स अच्छा है तो हम लोग इसमें प्रेफर करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग 25 सीट से ज्यादा जो है वो अलाउ नहीं करते। अगर कोई टीचर या जो बाकी लोगों से अगर आपको आपको फॉरवर्ड किया जाता है तो भी अलाउ।
0: अच्छा एक प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि आपने ये खर्च तो आपने बता दिया कि ये खर्च है, उसके बाद जब जॉब लग जाती है तो ट्रेनिंग पीरियड होती होगी
1: जी।
0: पहले तो ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में भी बच्चों को कुछ
1: नहीं
0: दिया जाता है?
1: ट्रेनिंग
0: वो कितना वक्त का ट्रेनिंग होता है?
1: ट्रेनिंग निर्भर करता है जैसे बच्चे जो है वो परफॉर्म करते हैं ठीक है।
0: ठीक है,
1: 3 साल में बच्चे परफॉर्म करते हैं, हमारे पास कंपनीज आती है जो इंटर्नशिप कराती है। अब इंटर्नशिप में कंपनी जो भी कंपनी आएगी एक कॉमन सा क्वेश्चन ये रहता है कि मेरे को अच्छे बच्चे चाहिए ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि कौन बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म किया उसको सबसे अच्छी वाली कंपनी में भेजते हैं, फिर धीरे धीरे करके वैसे वैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो जो अच्छी कंपनीज है वो पे भी करती है स्टाइपेंड 1000 1500 ऐसे, मतलब जस्ट फॉर बिकॉज वो बहुत दिन तो वहां पर नहीं ना, जस्ट फॉर लाइक 45 डेज का इंटर्नशिप
0: पीरियड। अच्छा
1: ठीक है, 45 डेज का इंटर्नशिप हो गया, 6 सेमेस्टर ये लोग पास आउट करते हैं, उसके बाद जो है वो कैंपस प्लेसमेंट जो है वो हमारा चालू।
0: तो वो सैलरीज मोटा मोटी का अनुमान बताए कि कितने से शुरुआत होती है? जब
1: एक मोटा मोटी अगर अनुमान बताए तो हम लोगों का लास्ट टाइम का जो रहा वो 2.4 से स्टार्ट हुआ था।
0: अच्छा,
1: तनिष्क इज 2.4 जो पहली अगर लोएस्ट हम लोग ले तो, और हाईएस्ट हमारा गया है 8 लाख का पैकेज गया है बायजूस, तो इसके इन बिटवीन रहता है किसी का 3.5
0: है या
1: ईयर
0: ईयर पैकेज साल का पैकेज
1: साल का 8 लाख का।
0: तो बहुत ही बढ़िया आपने बताया सौरभ सर
1: जी, और क्योंकि वो हमारे बैच के इंजीनियरिंग में टॉपर भी थी तो ठीक है
0: सही,
1: उसका चूंकि अब टॉपर है तो अच्छा प्लेसमेंट हो गई ठीक
0: है। बायजूस उनको
1: जी बैंगलोर ऑफिस
0: जी जी। तो श्रोताओं हमारे बीच थे सौरभ कुमार जी, जिनके माध्यम से आज हमने जाना कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है यानी कि वोकेशनल कोर्सेज जो है 10+2 के बाद आप इसमें दाखिला ले सकते हैं, और ख़ासतौर से हमने BCS के बारे में चर्चा की और अच्छी चर्चा हमारे बीच हुई है जिसे सुनने के बाद ये समझ में आता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वोकेशनल कोर्स और इसमें छात्रों का छात्राओं का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। तो आप अवश्य ही 10+2 के बाद इस और जैसे ध्यान दें, और चूँकि KV वुमेंस कॉलेज में BCS की पढ़ाई हो रही है यहाँ से आपको प्लेसमेंट की भी सुविधा दी जाती है, आप यहाँ आएँ आपका स्वागत है और अपने करियर का निर्माण करें। सौरभ सर आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
2: तो ये जानकारी ये भेंट वार्ता हम सभी सुन रहे थे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में युवाओं का भविष्य, भेंट वार्ताकार थे सौरभ कुमार और इनसे हम सबके लिए बातचीत किया अशोक कुमार ने। इसके साथ ही कार्यक्रम युवा साथियों का युववाणी अब यहीं तक, अपने दोस्त माणिक को अब अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार।

साथ ही अपना कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे, फिल्म संगीत सुनने जा रहे हैं आप सभी अपने आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आपने ट्यून किया अपना फेवरेट चैनल FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़। अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी भारत के कोने कोने से आप सभी सुन रहे हैं। तो आज का दिन है विशेष, आपका दोस्त है माणिक आपके साथ। आज शाम 7:30 पर स्वरों के रोशन सितारे ये कार्यक्रम सुनिएगा। महान संगीतकार रोशन के जन्म दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं। रात्रि 10 बजे अमर स्वरांजलि सुनिएगा। सुरों के जादूगर महान संगीतकार मदन मोहन को देंगे भावभीनी श्रद्धांजलि। अभी कुछ ही दिन पहले हम सबकी स्वर सुमन, स्वर की कोकिला एस जानकी ने दुनिया को अलविदा कहा। रात 10:30 पर भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे आज के फनकार के अंतर्गत। तो अब फिल्म संगीत। स्वागत सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं का करते हैं फिल्म संगीत में। सबसे पहले त्रिनेत्र फिल्म का यह गीत लेकर आ रहे हैं, या यूं कहें आ गए हैं।

और त्रिनेत्र फिल्म का ये पूरा का पूरा गीत सुनेंगे। पहले जान लें कि सपना मुखर्जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने अपनी आवाजें दी हैं इस गीत को, और समीर ने लिखा है, आनंद मिलिंद ने संगीत दिया है।

क्रांति। अब आइए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में इस गीत का आनंद लिया जाए। संतोष आनंद हैं गीतकार, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब अगला गीत संजोग फिल्म से लिया है हमने आपके लिए। आशा भोसले की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण ने गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। साथियों आज रात 10 बजे अमर स्वरांजलि सुनिएगा। सुरों के जादूगर महान संगीतकार मदन मोहन को भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। फिलहाल आशा भोसले के स्वर में संजोग फिल्म का ये गीत सुनिए। फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप सभी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

कविता कृष्णमूर्ति गा रही हैं इस गीत को। फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप सभी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। फिल्म का नाम है बॉम्ब ब्लास्ट और केसी वर्मा है गीतकार और धुनों में पिरोया इस गीत को बप्पी लाहिरी ने।

दुआ करते हैं कार्यक्रम में चलते चलते कि पिया सबके आए, क्योंकि बदरा छाए हुए हैं और छाए रहेंगे। लेकिन चलते चलते मनहर उदास और मोहम्मद अजीज के स्वरों में इस गीत को गुनगुनाते जाइए। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, संगीत से संवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप सभी सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका ही FM 102.1 MHz। श्रोताओं, समय हुआ है प्रादेशिक समाचार सुनने का। संध्या के 7 बजते ही प्रादेशिक समाचार, और 7:10 पर जिले में आजकल सुनेंगे आप सभी। इन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 के तहत झारखंड पवेलियन का उद्घाटन। राज्य के 6 जीआई टैग प्राप्त वस्त्र उत्पादों की लगी प्रदर्शनी। राज्य भर के बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ बीएलए की बैठक संपन्न। सीईओ ने कहा एसआईआर में गैर भारतीयों का शामिल होना दंडनीय अपराध। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय का किया घेराव। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने भी किया प्रदर्शन। रांची में जगन्नाथपुर रथयात्रा और मेले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर। 16 से 25 जुलाई तक लागू रहेगी विशेष यातायात व्यवस्था। और ओमान में होने वाली महिला यूथ हॉकी 5-साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। झारखंड के 6 खिलाड़ियां शामिल। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 में झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 6 जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे राज्य का विकास तेज होगा। राज्य में चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत चुनाव पाठशालाएं आयोजित की गईं। इस दौरान बूथों पर मृत, एब्सेंट और शिफ्टेड मतदाताओं की सूचियों को मिलान हुआ। इस कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लोहरदगा के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को एएसडीडी सूची के कड़े सत्यापन और केवल भारतीय नागरिकों के नाम जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर भारतीयों द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लेना एक दंडनीय अपराध है। श्री कुमार ने बताया कि आगामी 22 जुलाई को होने वाली अंतिम बैठक में एएसडीडी सूची को अंतिम रूप देकर 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
1: 6 कैटेगरी का व्यक्ति है, उनके बारे में चर्चा होगी, उनका नाम रात फॉल में नहीं आएगी। अतः एक्सेंट है, शिफ्टेड है, डेट डुप्लीकेट, भारत का नागरिकता यहाँ छोड़कर दूसरा देश में नागरिकता प्राप्त कर लिया, उनका भी नाम रात फॉल में नहीं जाएगी। फिर 22 तारीख को उसी सूची फाइनल किया जाएगी।
0: इस बीच रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि प्रपत्र वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य तेज है। उन्होंने वोटरों से बीएलओ को सहयोग करने की अपील की है।
2: लोकतंत्र में भागीदारी होने के लिए निश्चित रूप से मतदाता को इसमें आगे बढ़ चढ़कर बीएलओ को मदद करे और अपना एक गणना प्रपत्र भर के दे और एक अपने पास रखे ताकि रेफरेंस के लिए वो बाद में मदद। लास्ट डेट के लिए मेरा अनुरोध है जिला प्रशासन का, जिला निर्वाचन कार्यालय का, वेट न करें।
0: उधर गुमला में सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने 6 बूथों का औचक निरीक्षण कर गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने और हर पात्र नागरिक को जोड़ने का निर्देश दिया। खूंटी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदान केंद्रों पर लगाए गए शिविरों में मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई। लोग केंद्रों पर पहुंचकर फोटोयुक्त प्रपत्रों का सत्यापन कराते देखे गए। बिना मैपिंग वाले वोटरों का अन्य राज्यों की सूची से मिलान किया गया। राज्य के पूर्व मंत्री और धनबाद के पूर्व विधायक मन्नान मल्लिक का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पहले विधानसभा परिसर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मंत्री दीपक बिरुवा और विधायक कल्पना सोरेन ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया।
3: हमने खुद को समाज के लिए और आम जनों के लिए हमारे साथ विधानसभा में बतौर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी के रूप में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। निश्चित रूप से आज जो वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी अनुभव, उनका जो समाज के प्रति दिया हुआ संदेश है वो हमारे बीच रहेगा।
0: इसके बाद उनका पार्थिव शरीर प्रदेश कांग्रेस भवन लाया गया, जहाँ मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पूर्व केंद्र मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में आज अभ्यर्थियों ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में आयोग कार्यालय का घेराव किया। आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रश्न पत्र लीक और सीटों की बिक्री का गंभीर आरोप लगाया है।
4: जेपीएससी में जो बढ़ती गई अनियमितता, उसके विरोध में हम सभी आज जेपीएससी कार्यालय घेरने आए हैं। जो कटअप मार्क जारी नहीं किया गया, लगातार छात्र लोग अपनी बातों को रखने का काम जेपीएससी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के, फिर भी जेपीएससी गहरी निंद्रा में सोई हुई है। को सड़क से लेकर सदन तक का पुरजोर विरोध करेंगे।
0: रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने के नगर निगम के अभियान के विरोध में आज फुटपाथ दुकानदारों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। दुकानदारों का कहना है कि बिना नोटिस दिए उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धनबाद में मानसून के दौरान कोयले के निर्बाध उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीएल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बस्ता कोला विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने खदानों में जल जमाव रोकने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
5: हम सभी जानते हैं कि देश में कोयले की बहुत ही मांग है, थर्मल पावर को कोयले की बहुत आवश्यकता है, तो इस मानसून पीरियड में भी सुरक्षा सेफ्टी के साथ कोयले का निर्विघ्न डिस्पैच ट्रांसपोर्टेशन आदि होता रहे और अधिक से अधिक उत्पादन हो, इसी सारे विषयों पर मीटिंग ली गई। सबने विश्वास दिलाया कि बस्ता कोयला का जो टारगेट है 35.5 लाख टन, उससे भी अधिक ये बढ़कर करेंगे।
0: हजारीबाग में आयोजित 2 दिवसीय उड़ान लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में देशभर की महिला उद्यमियों ने शिरकत की। केंद्र सरकार की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर महिलाएं न केवल खुद का व्यवसाय चला रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं।
6: अभी आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द मोदी जी, क्योंकि उनको देख के हमें ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि वुमेन को, बच्चों को या जिनको जरूरत है उनको हम काम देते हैं। उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वही हमारा भी नारा है एंड कोशिश करेंगे कि और बढ़ाएंगे और उनसे प्रभावित होकर और अच्छा काम करें।
0: रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेले के मद्देनजर सुचारू यातायात के लिए 16 से 25 जुलाई तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन और नो एंट्री लागू रहेगी। बिरसा चौक, प्रभात तारा मैदान और तिरिल मोड़ के पास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम केंद्र रांची ने आज राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह समेत कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओमान के मस्कट में होने वाली महिला यूथ हॉकी 5-साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीमों में झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। महिला टीम में संदीपा, पुष्पा, श्रुति, नीलम और खिल्ली कुमारी को, जबकि पुरुष टीम में आशीष तनीपूर्ति को जगह मिली है। हॉकी झारखंड ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 के तहत झारखंड पवेलियन का उद्घाटन। राज्य के 6 जीआई टैग प्राप्त वस्त्र उत्पादों की लगी प्रदर्शनी। राज्य भर के बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ बीएलए की बैठक संपन्न। सीईओ ने कहा, एसआईआर में गैर भारतीयों का शामिल होना दंडनीय अपराध। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय का किया घेराव। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने भी किया प्रदर्शन। रांची में जगन्नाथपुर रथयात्रा और मेले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर। 16 से 25 जुलाई तक लागू रहेगी विशेष यातायात व्यवस्था। और ओमान में होने वाली महिला यूथ हॉकी 5-साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड के 6 खिलाड़ियां शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में SIR का काम लगातार जारी है। इसको लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है। उन्हें SIR प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी दी जा रही है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने बताया कि
2: झारखंड में जो है हम लोगों का SIR स्पेशल इंटेंसिव रिव्यूजन 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक हमारे सारे BLOs जो है एनुमरेशन फॉर्म लेकर के घर घर जाएंगे और घर घर जाने के बाद जितने भी हमारे मतदाता है वो उसमें हस्ताक्षर करके वापस और जिनका एनुमरेशन फॉर्म लौटेगा उन्हीं का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो 5 अगस्त को प्रकाशित होगी उसमें नाम आएगा। तो मेरा आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से निवेदन हूं कि अपना अपना एनुमरेशन फॉर्म भर के BLO के माध्यम से उसमें वापस लौटा।
1: इधर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुखदेव भगत ने SIR कार्यक्रम के तहत BLO के माध्यम से अपना गणना प्रपत्र भरकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से समय पर गणना प्रपत्र भरने तथा SIR की प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि
3: लोहरदगा के तमाम जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि मतदाता गहन परीक्षण एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से सारे लोग की जिम्मेवारी बनती है कि आप अपना नाम जरूर अंकित कराएं, क्योंकि ये आपकी पहचान के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसपे इसकी आवश्यकता है। तो आप इनका सहयोग करें, आपके BLO आपके घर तक जाएंगे और अगर कोई कमी हो तो निश्चित उनसे संपर्क करें और अधिक से अधिक लोगों को इसपे इनरोल कराने का आप लोग सारे लोग प्रयास करें।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने लोहरदगा जिला के किस्को एवं पेसरार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी जनजातीय व्यक्ति के साथ उत्पीड़न, भेदभाव या सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई समस्या होती है तो वह आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। लोहरदगा जिला में जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में 17 जुलाई से नदिया हिंदू उच्च विद्यालय के स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां की जा रही है। इस मौके पर जिला फुटबॉल संघ के अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि फुटबॉल लीग के माध्यम से खिलाड़ियों को नशा से मुक्ति और रक्तदान के लिए जागरूक किया जाएगा। लोहरदगा जिला के ओयना टोंगरी में मिले 100 की गुत्थी मात्र चंद घंटे में ही पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 100 के अन्य हिस्से एवं हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सामान बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि
4: जो मृतक है उसके 2 मित्र थे जिनका नाम अरमान और सहबाज था। वो तीनों दिनांक 4 तारीख को सहबाज के घर में किसी प्रकार का पार्टी कर रहे थे जहां पे उन्होंने पिया खाया और किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया जिसमें कुछ हाथापाई हुई जिससे मृतक के सर में चोट आया। उस बॉडी को अपने सहबाज के घर के आंगन में रख के पीसेस में करके 2 पार्ट में फेंका गया। उन्होंने अपने घटना में शामिल होने का स्वीकार किया।
1: लोहरदगा जिला में वर्षा शुरू होते ही किसान खेती के काम में लग गए हैं। कृषि विभाग की ओर से अनुदान पर बीजों का भी वितरण किया जा रहा है। किसानों को उम्मीद है कि इस वर्ष बेहतर पैदावार होगी। लोहरदगा जिला में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। रथ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
0: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्य।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आप सबका दैनिक संगीत वाला कार्यक्रम झनकार।

झनकार सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। कविता कृष्णमूर्ति की इस आवाज के साथ कर रही है सनम बेवफा फिल्म का गीत, सुनिए।

0: दोस्तों साथियों, ट्यून किए रहिए आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र, क्योंकि बस थोड़ी ही देर में झनकार के बाद स्वरों के रोशन सितारे, महान संगीतकार रोशन के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम सुनवाऊंगा आपको। आज देंगे रोशन साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं। फिलहाल झनकार का लुत्फ उठाते रहिए। कार्यक्रम का अगला गीत नसीब फिल्म से है, जो चल रहा है बस नेपथ्य में। मोहम्मद रफी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाजें। और कार्यक्रम आपका जाना पहचाना, और जिसका करते हैं 7:15 पर हर संध्या इंतजार आप। झनकार
1: चाल फोड़ना, साला पीछे करता जा रहा, चल जा।

झनकार सुन रहे थे आप सभी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, 7:30 और 10 सेकंड होने को। अब आइए सुरों के उजाले के शिल्पी महान संगीतकार रोशन को जन्म दिवस पर विनम्र नमन करते हुए प्रस्तुत करते हैं एक विशेष कार्यक्रम संगीतमय अंक स्वरों के रोशन सितारे। कार्यक्रम की परिकल्पना राजीव कुमार ने की।

स्वरों के रोशन सितारे, महान संगीतकार रोशन के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं आपका दोस्त माणिक चक्रवर्ती। परिकल्पना की है राजीव कुमार ने। जन्मदिन की शुभकामनाएं रोशन साहब। दोस्तों, आज 14 जुलाई भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में यह तिथि इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज ही जन्म हुआ था उस विलक्षण संगीतकार का जिसकी धुनों में शास्त्रीय संगीत की गरिमा, सूफियाना रंग, गजलों की नजाकत और लोक धुनों की आत्मीयता एक साथ सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार रोशन साहब की। जन्म दिवस की शुभकामनाएं दीजिए भाई। 25 वर्षों से भी कम के फिल्मी सफर में उन्होंने ऐसा संगीत रचा रोशन साहब ने, जिनका जन्म दिन आज है और हम सभी मना रहे हैं। कहते हुए स्वरों के रोशन सितारे, बस रोशन साहब। तो आज भी उनके गीत उतने ही ताजे, उतने ही मधुर और उतने ही लोकप्रिय हैं। तो आइए ना, जन्म दिवस पर रोशन साहब को श्रद्धा, सम्मान और सुरों का सलाम अर्पित करें, क्योंकि जो सुर दिल में उतर जाए वही पहचान होता है। हर किसी के नसीब में कहां ऐसा वरदान होता है। रोशन ने जो धुनें रची वो आज भी हर दिल की मुस्कान होती है। देखिए आपके दिल की मुस्कान किस तरह से आपके चेहरे पर आकर खिल उठेंगी और सबको ये कहने पर मजबूर करेंगी।

कितनी अद्भुत और अजीब बात है ना, समय बीत जाता है लेकिन कुछ गीत समय के साथ और भी सुंदर लगने लगते हैं। रहे ना रहे हम, ऐसा ही एक अमर गीत है श्रोताओं, जिसमें आप सभी जानते ही हैं कि रोशन साहब ने संगीत को भावना का रूप दे दिया।

कुछ मौसम कुछ नगमे जो हैं वो नहीं देखते कि नगमे मौसम नहीं देखते। हाँ, हर दिल में बस घर कर जाते हैं। सच्चे संगीतकार कभी नहीं जाते, अपनों सिरों में वो अमर हो जाते हैं।

रोशन साहब की सबसे बड़ी खूबियों में जो आप जानते हैं उसमें मैं एक और खूबी बता दूं, धुनों की सादगी। बिना किसी अनावश्यक शोर के केवल सुरों के सहारे दिलों को जीत लेना, यही तो हमारे आज के बर्थडे बॉय रोशन साहब की पहचान थी। क्योंकि सुर जब सच्चे होते हैं तो शब्द खुद मुस्कुरा उठते हैं, धुन जब रोशन की हो तो दिल खुद गुनगुना उठते हैं।

आज के हमारे बर्थडे बॉय महान संगीतकार रोशन साहब ने प्रेम गीतों को ऐसी गरिमा दी कि वो केवल फिल्मी गीत नहीं रहे बल्कि लोगों की निजी यादों का हिस्सा बन गए। तभी तो कहते कहते एक शेर अर्ज करने का मन कर रहा है और कहना भी चाहिए क्योंकि बर्थडे है आज और जन्मदिवस है आज रोशन का। साज की आवाज कम हो सकती है मगर एहसास कभी कम नहीं होता। अच्छा संगीत उम्र नहीं पूछता, वो हर दौर में जवान रहता है।

स्वरों के रोशन सितारे, संगीतकार रोशन के जन्म दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते जाइए। अब जो अगला गीत मैं सुनवाने जा रहा हूं, भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय फिल्म संगीत में इतने सहज रूप में पिरोना हर किसी की बात तो नहीं थी। रोशन इस कला के बेजोड़ उस्ताद थे। और एक क्लू देता हूं ताकि वो गीत आने से पहले ही आपके होठों पर सज जाए और निकल जाए। रागों से जिसने रिश्ते जोड़े, हर दिल में अपना घर कर गया, वो सुरों का ऐसा मुसाफिर था जो अमर होकर गुजर गया।

क्या कहा? अभी अभी आपने आकाशवाणी का हजारीबाग ट्यून किया स्टेशन, कोई बात नहीं, सुरों के बेताज बादशाह और साथ में संगीत के बेताज बादशाह, स्वरों के रोशन सितारे सुन रहे हैं हम सभी। जन्मदिवस की बधाइयां दीजिए रोशन साहब को, पार्टी संगीत की जारी है।

रोशन के संगीत में मिठास भी थी, आध्यात्मिकता भी और हिंदुस्तानी संगीत की आत्मा भी थी। यही वजह है कि उनकी धुनें आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। धुने अगर दिल से निकले तो सदियों तक गूंजती है। रोशन जैसे फनकार सिर्फ इतिहास नहीं विरासत होते हैं।

रागों से जिसने रिश्ते जोड़े हर दिल में अपना घर कर गया। वो सुरों का ऐसा मुसाफिर था जो अमर होकर गुजर गया। रोशन साहब को दीजिए उनके जन्म दिवस पर ढेरों बधाइयां।

श्रोताओं, सुरों का ये कारवां यही थामता है, लेकिन रोशन साहब की धुनों की महक अभी समाप्त नहीं हुई है। पार्टी अभी चल रही है, क्योंकि हम सभी स्वरों के रोशन सितारे, महान संगीतकार रोशन के जन्म दिवस पर ये विशेष समय मना रहे हैं। पार्टी का संगीतमय पार्टी चल रही है। उन्होंने हमें केवल गीत नहीं दिए, बल्कि ऐसे अनमोल एहसास दिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुनगुनाए जाते रहेंगे। आज उनके जन्म दिवस पर आकाशवाणी हजारीबाग की ओर से महान संगीतकार रोशन को शत शत नमन। अंतिम शेर कह जाता हूं कि रोशन नाम था, रोशन ही काम था, हर धुन में प्रेम का पैगाम था। जब तक गूंजेंगे हिंदुस्तान में सुर, तब तक अमर उनका नाम था। आपका दोस्त माणिक चाहता है आपसे अनुमति। परिकल्पना थी राजीव कुमार की, प्रस्तुत कर रहा था मैं आपका दोस्त, स्वरों के रोशन सितारे। पार्टी अभी बाकी है, एक गीत चलते चलते सुनेंगे।

महान संगीतकार। रोशन के जन्म दिवस पर हम सभी स्वर के साथ उत्सव मना रहे थे, स्वरों के रोशन सितारे सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। रात्रि 10 बजे अमर स्वरांजलि सुनिएगा। जी हाँ, अमर स्वरांजलि। सुरों के जादूगर, महान संगीतकार मदन मोहन को देंगे भावभीनी श्रद्धांजलि। अमर स्वरांजलि। रात्रि के 8 बज गए और 8 बजते ही अब लीजिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये सफर शुरू करते हैं, जिसे हम सभी रोज रात को इंतजार करते हैं, कहते हुए आपकी चाहत। कार्यक्रम का पहला गीत जिन्होंने पसंद किया, इस गीत को सुनने के बाद हम उनके नाम पढ़ेंगे।

आपकी चाहत सुन रहे हैं आप सभी। पहला ही गीत था ये, मिस नहीं किए हैं आपने और आपने सही समय पर इस गीत को गाया, गुनगुनाया। जमाना दीवाना दीवाना फिल्म से ये गीत था। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजें थी। इस गीत को पसंद किया था डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आपने हमें खत लिखा था। रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलंता देवांगन और डिंपल देवांगन। भाई मानिक, आप नाम तो सबका ले रहे हैं, हम कैसे सुने इस गीत को ये नहीं बता रहे हैं। भाई हम बीच बीच में बताते तो रहते हैं, आपको भी बता देते हैं। कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत, ये है पता। कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पोस्ट बॉक्स नंबर 1 और पिन संख्या 825301। ये छोटा सा पता पोस्ट कार्ड पर लिखिए, फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपने और अपने चाहने वालों का नाम और भेज दीजिए कहीं से भी। हम पूरे भारतवर्ष में न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आपको सुनवाएंगे आपके ही पसंद के गीत। तो हो गया ना, अब आगे बढ़े। इस गीत को पसंद किया कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ने, निहारिका वंश बत्ता, नितिन पलक, नीलम बत्ता और मुकेश बत्ता। आप हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से। और ये पोस्ट कार्ड मेरे हाथ में, इस गीत को सुनना चाहा था। मलोट कैंप पंजाब से सतीश भगलानी, सीमा भगलानी, रमेश मिगलानी और साथ में गुरुचरण ग्रोवर और शाइना के साथ अनमोल ने। औरंगाबाद से राजेश साबले पसंद कर रहे थे इस गीत को, पाटिल साहब, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने भी इस गीत को पसंद किया था। जमाना दीवाना फिल्म का ये गीत हो चुका, कुमार शानू की आवाज जमाने को है, कसूर फिल्म का गीत है। और जिन श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया, उनके पोस्ट कार्ड, उनके फरमाइशी गीतों के पोस्ट कार्ड ये रहे। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश भाई ने खत लिखा, उनके सभी बंधुगण भी लिख रहे हैं। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्यासी ने भी खत लिखा। ये दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार साहब ने हमें खत लिखा है। छत्तीसगढ़ भाटपाड़ा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने हमें खत लिखा। और ये बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्ल्यू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर ने खत लिखा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। और इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्ल्यू नूरजहां के साथ सईद नूरजहां और वसीम नूरजहां। कुमार शानू की आवाज में आप सबने सुनना चाहा, हम भी सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं कसूर फिल्म का ये गाना।

कुछ कुछ होता है। इस फिल्म का गीत सुन रहे हैं आप सभी मनप्रीत अख्तर, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें, हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक, मिका बीरक, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत को सुनना चाहते हैं।

स्वर सुमन, स्वर कोकिला, एस जानकी को भी भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे आज के फनकार कार्यक्रम में। तो अब आगे बढ़ते हैं, फरमाइशी गीतों का सफर चल रहा है और फरमाइशी गीतें ऐसी हैं जो कभी खत्म ही ना हो, भले समय अलविदा कह जाए। तो समय के अलविदा कहने से पहले ही जल्दी से जल्दी अब हजारीबाग पत्रातु से वेसिल खलखो, मधु, रितु, रचना, मीतु, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, मनीषा, सोरेन और समस्त परिवार के लोगों की फरमाइशें ले लेते हैं और साथ में लेते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज और बिट्टा पंजाब के साथ, बिट्टा बजाज के साथ साहिल की ये फरमाइश।

अपने दोस्त मानिक के साथ आप सुन रहे हैं अपनी ही पसंद के गाने, कार्यक्रम आपकी चाहत ने। श्रोताओं, आज सुरों के जादूगर महान संगीतकार मदन मोहन को भावभीनी श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं हम सभी। अमर स्वरांजलि सुनिएगा रात्रि 10 बजे। परिकल्पना राजीव कुमार की है। कार्यक्रम आपकी चाहत में एक बार फिर से कनेक्शन जोड़ते हैं अपने उन श्रोताओं का जिनकी वजह से हम भारतवर्ष के कोने कोने में उनके पसंद के गीत सुन पाते हैं, गा पाते हैं, गुनगुना पाते हैं। ग्राम मानगढ़ से यह अगला खत अगले गीत के लिए पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। मिथिलेश पांडे, बबीता देवी, नीतू कुमारी, अंशु कुमार पांडे, बाबू सुधांशु कुमार पांडे, अभिषेक कुमार पांडे और समस्त पांडे परिवार मानगढ़ चौपारण से आप सभी जोहार नमस्कार भी लिखते हैं। आप सबको हमारा भी जोहार नमस्कार हो स्वीकार। और सीताराम मालाकार अब हैं अगले श्रोता। इनके साथ हैं इंदु देवी, कैलाश भगत, अनीता देवी, हर्षिका रानी, पूनम और कुसुम। जीटी रोड बरही से आप सभी खत लिखते हैं। ये मगनपुर से खत पहुंचा अमजद अली, आलम अली और अब्बास आलम के साथ आलम परिवार के सभी लोगों का। तो लीजिए सभी लोग बैठ के इस गीत का, अगले गीत का आनंद उठाएं। लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम दिल कहीं होश कहीं।

बेहतरीन गीतों का सिलसिला भेज देते हैं आप सभी भाई साहब। एक से बढ़कर एक गीत लगता है खत्म ही ना हो, लेकिन आगे बढ़ना है ये कारवां तो चलेगा आपकी चाहत बस अब आगे की ओर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से खत पहुंचा अगले गीत के लिए कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान और मुस्तफा खान के साथ राऊ भाई और शाहिद भाई का। ये खत गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने हमें भेजा। नवा टोला भिखनपुर भागलपुर से गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान ने हमें खत लिखा। सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से महबूब आलम, मकसूद आलम, पाकिजा बेगम, महमूद आलम के साथ महफूज आलम और शमशाद बेगम ने हमें खत भेजा। यह अगला पोस्ट कार्ड मेरे हाथ में यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान, माधवी चौहान का पहुंचा है। मेन रोड बनोसा दरियापुर जिला अमरावती से आप खत लिखते हैं, तो लीजिए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गाना।

धन दौलत इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में सुन रहे हैं आप सभी। और बस यहीं पर अब अपने दोस्त माणिक चक्रवर्ती को इजाजत दीजिए कार्यक्रम आपकी चाहत से। नमस्कार।

फरमाइश फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे थे आप सभी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, कुछ ही देर में समाचार संध्या का आज का अंक होगा। रात्रि 9 बजे News@9 सुनिएगा और 9:15 पर स्पॉटलाइट, इन सबको हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम होंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से और रात्रि 10 बजे सुरों के जादूगर महान संगीतकार मदन मोहन को भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे, अमर स्वरांजलि। इस कार्यक्रम के तहत परिकल्पना है राजीव कुमार की। तो इन समाचारों के लिए और विविध भारती के लिए चलिए रिले केंद्र की ओर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों लेकिन लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौते के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: This is also one of the most ambitious.
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और

0: समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy

0: is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional trust.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chased a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
4: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
3: India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the Ministry.
4: We had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा ओ हम नवा,
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीत का रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं, बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज 14 जुलाई। कहा जाता है किसी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उसके पुरस्कार नहीं होते बल्कि उसका स्वाभिमान और उसकी कला होती है। महान संगीतकार मदन मोहन ऐसे ही व्यक्ति थे। आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र को सुन रहे श्रोताओं, सुरों के जादूगर महान संगीतकार मदन मोहन को आज भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। आज ही के दिन 1975 को इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए थे मदन मोहन साहब। आज विशेष कार्यक्रम अमर स्वरांजलि भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ, परिकल्पना राजीव कुमार की, संग में आपके आपका दोस्त माणिक चक्रवर्ती। स्वर सामराज्ञी लता मंगेशकर ने बड़े स्नेह से मदन भैया कहकर पुकारती थी उनको। एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि मदन भैया बहुत खुददार इंसान थे। वे अपने आदर्शों के सामने न झुकते थे और न ही समझौता करते थे। पुरस्कार मिले ना मिले, उन्हें इसकी कोई शिकायत नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी खुशी यह थी कि श्रोता उनकी धुनों को अपने दिल में बसाए रखें और लता ये सोचे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद यही कारण है कि आज भी वर्षों बाद उनके संगीत का जादू उतना ही ताजा है। सम्मान समय देता है लेकिन अमरता श्रोता देते हैं, और यह अमरता मदन मोहन को उनके अनमोल संगीत ने दिलाई। आइए उस महान संगीतकार की स्मृति को नमन करते हुए सुनते हैं लता मंगेशकर की अनुपम आवाज में मदन मोहन के संगीत से ही सजा वह अमर गीत जो आज भी हर दिल में रिमझिम बरसता है।
1: बड़े खुददार थे मदन भैया। अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले? वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला, और न मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।

ये संगीतकार मदन मोहन की आवाज है। आज भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम इस महान संगीतकार को। अमर स्वरांजलि।

श्रोताओं, किसी भी महान संगीतकार की पहचान केवल उनकी धुनों से नहीं होती, बल्कि उस सोच से होती है जो उन धुनों को जन्म देती है। इस गीत के बारे में स्वयं मदन मोहन ने कहा था कि यह गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। इसकी धुन बनाते समय मैंने केवल यही सोचा कि इसमें प्रेम, उम्मीद और जीवन की नई रोशनी का एहसास सुनाई दे। और जब इस अनमोल धुन को मोहम्मद रफी साहब की जादुई आवाज मिली तो यह गीत हमेशा हमेशा के लिए संगीत प्रेमियों के दिल में बस गया। कुछ धुनें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और दिल से निकले वही सदियों तक गुनगुनाई जाती हैं।

अगला गाना जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो मेरे स्टाइल से लोग कहते हैं जरा हटके है, लेकिन मैं जानता हूँ कि स्टाइल म्यूजिक का किस किस्म का हो, अगर उसमें जज्बात का थोड़ा सा भी हिस्सा हो तो बहुत खूबसूरत मालूम होता है। शोर शराबा तो आजकल दुनिया में होता ही रहता है, आप जिस तरफ जाएं शोर ही शोर है, कहीं बसें हैं, कहीं गाड़ियां हैं, कहीं लोग हैं, कहीं मारपीट है, तो इनसे आजकल दूर भागना बड़ा मुश्किल सा मालूम होता है।

दर्द जब सुरों का लिबास पहन ले तो हर धड़कन गुनगुनाने लगती है। कुछ गीत वक्त के नहीं होते, वे श्रोताओं हमेशा दिलों में बस जाते हैं। कुछ गीत केवल शब्द और धुन नहीं होते, वे मन की अनकही व्यथा बन जाते हैं। मायरी, मैं कैसे कहूं पीर अपने जिया की, ऐसा ही एक अनुपम गीत आज अमर स्वरांजलि में सुरों के जादूगर महान संगीतकार मदन मोहन को उन्हीं के इस गीत के साथ श्रद्धांजलि दें। मदन मोहन के संगीत की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे दर्द को भी इतनी खूबसूरती से सुरों में ढाल देते थे कि वह पीड़ा नहीं एक मधुर अनुभूति बन जाती थी। इस गीत में विरह की टीस है, मन की तड़प है और दिल की वह खामोशी है

श्रोताओं, प्रेम जब सच्चा हो तो उसे शब्दों की नहीं सुरों की जरूरत होती है। महान संगीतकार मदन मोहन ने फिल्म चिराग के लिए ऐसी ही एक अमर धुन रची। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी मिले और इस गीत को अमर आवाज में अमर बना दिया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। जो दिल से निकले वही नगमा असर कर जाता है, हर सच्चा सुर सदियों का सफर कर जाता है। मदन मोहन की धुनें आज भी यही कहती हैं, संगीत जब इबादत बन जाए तो हर दिल में घर कर जाता है। लीजिए, पेश है अमर स्वरांजलि में भावभीनी श्रद्धांजलि सुरों के जादूगर महान

संगीतकार मदन मोहन को चिराग फिल्म की इस कालजयी रचना से, उन्हीं की रचना से देते हैं श्रद्धांजलि। मदन मोहन के मधुर संगीत से सजा है ये गीत, जो आज, कल और आने वाले कई सदियों तक दिलों में बसे रहेंगे, जुबां पे आते रहेंगे।

तो एक शेर अनायास ही दिमाग में आया और जुबां तक आते आते बस यही कह गया कि कुछ धुनें वक्त की मोहताज नहीं होती, वे हर दौर में दिलों की धड़कन बन जाती हैं। मदन मोहन का संगीत भी ऐसी ही एक अमर विरासत है। आइए इस भावपूर्ण माहौल और पल को सुरों की खुशबू से महका देते हैं। सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मदन मोहन की कालजयी धुन।

को उदासी से खिल उठने तक पहुंचना है, गहराइयों तक कैसे जाना है, हमारे सुरों के जादूगर को यह पता था। ये महान संगीतकार हमारे दिलों में हमेशा बसे रहेंगे, भले ही आज के ही के दिन 1975 को इन्होंने अपनी सांसें त्यागी थी। मदन मोहन साहब को हम आकाशवाणी के परिवार की ओर से और अपनी ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आप सभी अमर स्वरांजलि सुन रहे थे मेरे यानी माणिक चक्रवर्ती के साथ। परिकल्पना दी थी राजीव कुमार ने। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। अभी कुछ दिनों पहले ही, बस चंद दिनों पहले ही, उंगलियों में गिने जा सकते हैं वो दिन जब एक पार्श्व गायिका ने हम सबको अचानक अलविदा कहा। नमस्कार श्रोताओं, मैं माणिक चक्रवर्ती आज का स्वर सुमन समर्पित करता हूं भारतीय पार्श्व गायन की उस विलक्षण स्वर साधिका को, जिनकी आवाज ने 5 दशकों से अधिक समय तक करोड़ों श्रोताओं के दिलों को स्पंदित किया। स्वर कोकिला एस जानकी अब तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सुर आज भी अमर हैं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आइए उनकी मधुर स्मृतियों का यह संगीतमय सफर आरंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं फिल्म मेरी जंग के इस चुलबुले से सदाबहार गीत के साथ।

स्वर सुमन सुन रहे हैं हम सभी। स्वर कोकिला एस जानकी अब हमारे बीच नहीं है। आज के फनकार कार्यक्रम के तहत भावभीनी श्रद्धांजलि एस जानकी को।

एक खनकती आवाज, एक चुलबुली अंदाज थी हमारी, स्वर कोकिला, स्वर सुमन। आज की फनकार एस जानकी। कुछ आवाजें श्रोताओं समय के साथ और भी अनमोल हो जाती हैं। स्वर थम सकते हैं, उनकी गूंज नहीं। सच्चे फनकार बिछड़ते हैं, बिसरते तो नहीं। एस जानकी का स्वर भी ऐसी ही अमर धरोहर है जो हर गीत के साथ एक नई अनुभूति दे जाता है। आज स्वर सुमन में हम उन्हें विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब सुनिए फिल्म सत्यमेव जयते का वह बेहद लोकप्रिय गीत, जिसे सुनने से पहले जो गीत जो शुरू करेंगे हम, उससे ठीक पहले जो संगीत की धुनें उभरेंगी, आप खुद ही गा उठेंगे।

कुछ आवाजें समय की सीमाओं में नहीं बंधती, वे हर बार सुनाई देकर अपनी उपस्थिति का एहसास करा जाती हैं। स्वर सुमन, स्वर कोकिला, आज की फनकार एस जानकी भले ही हम सब को छोड़कर इस दुनिया से चली गई हूं, आज हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हूं। लेकिन जिसके सुर दिलों में उतर जाएं, उसे भुलाया कहां जाता है। सच्चा फनकार इस दुनिया से जाकर भी कभी जाया करता है क्या?

0: But everybody will sing with me.
1: Okay.
0: Ready? Come on. 1, 2.

जब जब किसी भी रेडियो स्टेशन से ये सुर उभरेंगे, तब तब स्वर सुमन अर्पित होगा स्वर कोकिला को, जो है एस जानकी।

श्रोता मित्रों, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो मन की गहराइयों में उतरकर हमेशा के लिए अपना घर बना लेते हैं। एस जानकी की आवाज भी ऐसी ही एक अनमोल धरोहर है। आज स्वर सुमन में उन्हें हम सभी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यादों के सुर कभी फीके तो नहीं पड़ते, सच्चे फनकार कभी हमसे दूर तो नहीं होते।

जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन मधुर संगीत हर कठिन पल को भी हल्का बना देता है। शायद यही एक महान पार्श्व गायिका की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। वह अपनी आवाज से मुस्कान बांट जाती हैं और यादें छोड़ जाती हैं। एस जानकी ने भी अपने सुरों से करोड़ों दिलों को यही अनमोल सौगात दी है। दर्द आए तो गीतों का सहारा लेना, जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारा करना, यही तो कह गई आज स्वर सुमन हमारी, हम सबकी एस जानकी। भावभीनी श्रद्धांजलि।

करा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

0: प्यार हो गया, प्यार हो गया क्या करें।
1: स्वर सुमन, स्वर कोकिला एस जानकी को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे थे हम आज के फनकार कार्यक्रम में। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। बस थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is आकाशवाणी। द न्यूज़ रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahyan and MT Mombosa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth-level officers or BLOs will now visit house-to-house in both the states till the 24th of this month, which was earlier scheduled till the 14th of July. It added that the draft electoral roll will be published on the 31st of this month. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said, Bharat Tex is the vision of the Prime Minister. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The Minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex.